0: यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें नवजात बछड़ों में अतिसार, इसके उपचार व इससे बचाव के संदर्भ में। बछड़ों के पैदा होने के 4 से 5 दिन बाद से लेकर 3 माह तक की जो उनकी उम्र होती है, वो बछड़ों के जीवन काल की बीमारियों की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अवधि होती है। बछड़े पैदा होने के लगभग 3 से 4 सप्ताह तक रोग प्रतिरोध के लिए खीज द्वारा प्राप्त इम्यूनोग्लोबिन पर निर्भर रहते हैं। यदि खीज द्वारा यह क्षमता किन्हीं कारणों से उन्हें नहीं मिल पाती, तो ऐसे में बछड़े बीमारियों से लड़ने में असमर्थ हो जाते हैं। इसीलिए किसान भाइयों, अक्सर आप लोगों को सलाह दी जाती है कि शुरू का जो दूध होता है, जिसे हम खीज का दूध कहते हैं, वो बछड़ों को ज़रूर पिलाएं, क्योंकि इस दूध में एंटीबॉडीज होते हैं और ऐसे तत्व होते हैं जो कि बछड़ों को कई सारी बीमारियों से लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। जहाँ तक अतिसार का सवाल उठता है, अतिसार सामान्यतः बछड़ों में सबसे पहले असंक्रामक रूप में प्रकट होता है, लेकिन तुरंत ही ये संक्रामक रूप धारण कर लेते हैं। इसके प्रमुख कारणों में विभिन्न जीवाणु, विषाणु, कोक्सीडिया एवं एस्कैरिस आदि शामिल हैं। ये अलग अलग या एक साथ भी संक्रमण कर सकते हैं। प्रभावित बछड़ों में गोबर या मल पतला या पानी जैसा तथा पीला या भूरे रंग का हो सकता है। कभी कभी मल में रक्त भी मिला हो सकता है। बाद की अवस्था में इसमें श्लेष्मा मिश्रित भी हो सकती है। प्रभावित बछड़े दाना पानी लेना कम कर देते हैं तथा कमजोर हो जाते हैं। बछड़ों के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण उनकी त्वचा खुरदुरी हो जाती है, आँखों की चमक कम हो जाती है, वे सुस्त हो जाते हैं, उनके बाल झड़ने लगते हैं। ये सारे जो लक्षण हैं, इसी से आप पता कर सकते हैं कि आपके बछड़े में अतिसार का प्रकोप हुआ है। इस अवस्था में बछड़ों में निमोनिया भी बहुत जल्दी पैदा हो सकता है। इन लक्षणों के पैदा होते ही बछड़े के मल की जाँच कोक्सीडिया तथा कीड़ों के लिए करवानी चाहिए। जहाँ तक उपचार का सवाल है, अतिसार दिखाई पड़ते ही बछड़ों को 1-2 दिन तक यदि संभव हो तो दूध अलग से पिलाना बंद कर दें, क्योंकि आंत श्लेष्मा में उत्तक क्षय के कारण लैक्टोज शर्करा का पाचन नहीं हो पाता। इस अवधि में मांड आप दे सकते हैं। जीवन रक्षक घोल देकर पानी की कमी को रोका जा सकता है। जीवाणु जनित अतिसार की संभावना होने पर एंटीबायोटिक्स या सल्फा औषधियाँ भी दे देनी चाहिए। इसके लिए आप पशु चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं। जहाँ तक अतिसार से बचाव का सवाल है, बछड़ों को खीस पैदा होने के 3 से 4 घंटे के अंदर थन से ही पीने दें, फिर 36 घंटे के अंदर 5 से 6 बार खीस पिलाएं। बच्चे को आवश्यकता से ज़्यादा दूध न पीने दें। उन्हें अपने शरीर के भार के 1/10 भाग से कम दूध की आवश्यकता होती है। यदि बछड़ा थन से दूध ना पीता हो तो उसे हल्का गुनगुना दूध ही पिलाएं। दूध

0: हमेशा निश्चित अंतराल पर ही दें। कमजोर बछड़ों पर विशेष ध्यान दें। बछड़ों की रहने की जगह हवादार हो तथा प्रतिदिन कीटाणुनाशक घोल से इन जगहों को साफ करते रहें। जब दूध या कोई आहार बंद करना हो तो उसे धीरे धीरे घटाएं तथा दूसरे आहार को धीरे धीरे बढ़ाएं। इन बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप बछड़ों को अतिसार से बचा पाएंगे और पशुपालन से लाभान्वित हो पाएंगे।
1: श्रोताओं, अभी आप एग्री टिप्स सुन रहे थे।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कल बिश्केक में 6ठे विश्व घुमंतू खेलों के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। ये द्विवार्षिक आयोजन घुमंतू सभ्यताओं की समृद्ध खेल परंपराओं, संस्कृति और विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अभी भी लापता है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ ने भोटकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए तथा बिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बैठक में देश में विहरित विकास को गति देने और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी पहलों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान दिया गया। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 4था भारत जर्मनी पर्यावरण मंच आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन स्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही कपड़े के थैलों और दोबारा प्रयोग वाली बोतलों के उपयोग को बढ़ावा देना भी है। ये अभियान 15 सितम्बर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के

0: कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दो बच्चे भी शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50-50 हजार रूपये की सहायता राशि की घोषणा की है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल से 3 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये दौरा भारत बेल्जियम साझेदारी को और मजबूत करेगा। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगाम्यूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will address 26th Shanghai Cooperation Organization SCO Summit in Bishkek, Kyrgyzstan today. The 26th SCO Summit is being held under the central motto, Together for Sustainable Peace, Development and Prosperity. Mr. Modi is on a 2-day visit to Kyrgyzstan to attend the summit. On the first day of his visit, PM Modi engaged in cultural events, paid tribute to Mahatma Gandhi, attended the opening ceremony of the 6th World Nomad Games alongside other world leaders. Mr. Modi held bilateral meeting with Russian President Vladimir Putin yesterday. During his talk with Mr. Putin, PM Modi pushed for a diplomatic resolution to global conflicts, emphasizing the need to move from endless war to the end of war.
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. Prime Minister Modi said it is a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continued to scale new heights.
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: Prime Minister Modi also held bilateral meetings with leaders of Iran, Kyrgyz Republic and Armenia yesterday. India's real GDP has recorded a growth rate of 7.8% during the first quarter of current financial year compared to 6.9% during the same period previous year. Ministry of Statistics and Program Implementation released the quarterly estimates of GDP for the first quarter from April to June of the current financial year. It said Indian economy has sustained growth momentum despite global headwinds. The nominal GDP has also registered 10.3% growth during the first quarter of the current financial year. Secretary in the Ministry, Dr. Saurabh Garg, said growth across all sectors has been highly positive, which demonstrates that government interventions are having an impact despite geopolitical situation. Prime Minister Narendra Modi has termed India's exemplary GDP growth of 7.8% a Herculean feat. In a social media post, the Prime Minister said that the achievement reflects the collective strength and resilience of the people of the country despite oil prices.

0: shocks, supply chain disruptions, and global uncertainties. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman and Union Home Minister Amit Shah said the credit for this strong performance goes to the people of the country and their hard work. Bihar and Jharkhand have signed an MOU on sharing of Son River water in the presence of Union Home Minister Amit Shah in New Delhi. Jharkhand Chief Minister Hemant Soren, Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary, Jal Shakti Minister C.R. Patil were also present on the occasion. Speaking at the event, Union Home Minister Amit Shah said the agreement between Bihar and Jharkhand has resolved a long-awaited water dispute in eastern India. He said the agreement will provide irrigation water to lakhs of farmers in large rural areas of Bihar and Jharkhand, along with drinking water for the people. The fourth Indo-German Environmental Forum will be held in New Delhi today to strengthen bilateral cooperation and facilitate multi-stakeholder exchange of environment and climate change. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav, along with German Minister for Environment, Climate Protection, Nature Conservation and Nuclear Safety, Carsten Schneider, will co-chair the forum. Lionel Messi has announced his retirement from international football, bringing an end to a 20-year Argentinian career that included a World Cup triumph, two Copa America titles, and a record 207 appearances for his country. Messi said the decision had been on his mind since the World Cup final defeat to Spain, before the death of his father further convinced him it was time to step away. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:11 हुए हैं। लीजिए सुनिए जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाज रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार एमवी रानी चंगा माया बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल बुधवार 2 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी गुरुवार 3 तारीख को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से चलकर माया बंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। लिटिल अंडमान के लिए एमवी कैंबल बे आज सवेरे 10 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और आज ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान होते हुए कानिकोबार की यात्रा पर गुरुवार 3 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और शुक्रवार 4 तारीख को शाम 4 बजे कानिकोबार से चलकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। ननकौरी होते हुए कैंबल बे के लिए नालंदा जलियान आज सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और गुरुवार 3 तारीख को सवेरे 8 बजे कैंबल बे से चलकर ननकौरी होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी ज्वालेबाई शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए छूटेगा तथा दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। स्वराज द्वीप के लिए एमवी रानी चंगा आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा। ये जहाज दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। स्वराज द्वीप के लिए एमवी स्ट्रेट आइलैंड आज संध्या 5 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और कल बुधवार 2 तारीख को सवेरे 5:30 पर स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल बुधवार 2 तारीख को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। शहीद द्वीप के लिए एमवी कमोटा कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। एमवी रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज

द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एम वी ज्वाली बॉय शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी गुरुवार 3 तारीख को सवेरे 7 बजे रंगत से चलकर उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी।

0: श्रोताओं, ये था जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:15 हुए हैं। पेश है इंद्रधनुष कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष
2: नमस्कार, सुप्रभात। इंद्रधनुष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, जीवन चलने का नाम है, यानी कि जिंदगी चाहे कितनी भी कड़वटें बदले, हर हाल में बिना रुके बिना थके आगे ही आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि ठहर जाना कुछ पल की ज़रूरत ज़रूर हो सकती है, ठहर जाना जीवन नहीं हो सकता। हर परिस्थितियों में मुस्कुराकर हिम्मत के साथ आगे बढ़ना ही असल जिंदगी है। क्योंकि जीवन एक यात्रा है, इसे समझने की नहीं जीने की ज़रूरत है। जिंदा दिली से।

जीवन की सच्चाई और उसके बदलते रंगों की खूबसूरती का अपना अलग ही मज़ा है, क्योंकि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी खुशी, कभी गम, कभी उम्मीद, कभी आशा, कभी निराशा और विश्वास का मिला जुला संगम के साथ साथ इसमें मिलती है रिश्ते, भावनाएं और अनुभव की अलग अलग कहानियां, जो हमें सिखाती है जो मिला है उसकी कद्र करना, हर पल को महसूस करते हुए जीना। क्योंकि जीवन जैसी भी है अपनी है और एक ही बार मिलती है, क्योंकि जिंदगी एक किताब की तरह है जिनके हर पन्ने में एक नया रंग मिलता है। कभी मुस्कुराहट, कभी आंसू, कभी मिलना, कभी बिछड़ना, और इन्हीं तमाम रंगों से सच कर बनता है जीवन।

श्रोताओं, हम सब जीवन में बहुत कुछ सोचते और चाहते हैं, लेकिन हमारे अनुसार जीवन नहीं चलता। हाँ, कुछ पल हमारे मन के मुताबिक होते हैं, लेकिन कुछ पल हमें हमारी मजबूती का एहसास कराते हैं। हर मोड़ पर एक नया सबक लिए जीवन हमारा इंतज़ार कर रहा होता है, जो हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आते हैं। कहानी चाहे जैसी भी हो, उसका अगला पन्ना हमेशा हमारे लिए एक नया आगाज़ लेकर आता है, और इसी को जीवन कहते हैं।

0: अब चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।
2: श्रोताओं, अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थी फातिमा। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की 348वीं कड़ी।

सीता जी की अग्नि परीक्षा हो चुकी है। देवता वहां उपस्थित होकर दयालु परम हितकारी श्री राम की महिमा का गुणगान करते हुए जहां तहां हाथ जोड़े खड़े हैं। अत्यंत पुलक भरे शरीर तथा मन से ब्रह्मा प्रभु की स्तुति करते हैं। अनेकों कामदेवों के समान अनुपम छवि है प्रभु की। भक्त वत्सल भगवान शोक और भय का नाश करने वाले, क्रोध से परे और ज्ञान स्वरूप हैं। अवतार लेकर भी वे अजन्मे, व्यापक, अद्वितीय तथा अनादि हैं। हे प्रभु, आप सभी दोषों और निंदा से परे अखंड और सदा सर्वरूप हैं। सर्वरूप होकर भी आप वो सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे सूर्य और उसका प्रकाश अलग अलग होकर भी अलग नहीं हैं, उसी भांति आप संसार से भिन्न और अभिन्न दोनों ही हैं। इसी अवसर पर स्वर्ग से दशरथ जी वहां आते हैं। पुत्र श्री राम को देख उनकी आंखों में आंसू उमड़ रहे हैं। वे राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद देते हैं। पिता के सम्मुख नतमस्तक हो श्री राम अपने उद्गार प्रकट करते हैं। हे तात, ये आपके पुण्यों का प्रताप है जिसके बल पर मैंने अजेय राक्षसों पर विजय प्राप्त की।

श्रोताओं, अभी आप रामचरितमानस गान की 348वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे सुरेश वाटकर और साथ ही व संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:40 हुए हैं। पेश है वतन के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत देश गान।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं को मौसम के बारे में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका व्यक्त की गई है। इस बीच वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी। वहीं मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में कहा जाता है कि खराब मौसम के चलते अंडमान सागर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेंगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जिसके कारण मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे समुद्र में ना जाएं। कल सुबह तक के मौसम के बारे में अनुमान है कि द्वीपों के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। आइए अब एक नजर डालते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से कुछ देर बाद यानी सवेरे 7 आप सुनेंगे जन सूचनाएं। 7:05 पर होगा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन। देशभक्ति फिल्म गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागनी का आप आनंद ले पाएंगे सवेरे 7:15 पर। व साथ ही विविध भारती मुंबई से होगा प्रायोजित कार्यक्रम भोले बिसरे गीत। 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के तहत खेल जगत कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा ब्रिस्क वॉकिंग। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 8:30 पर फनकार होंगे पिनाज मसानी और रानू मुखर्जी। सवेरे 9 आप आनंद ले पाएंगे फिल्मी गीतों से सजे कार्यक्रम तराने सुहाने का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:30 पर एस गोविंदा राजन का कर्नाटक शैली में गायन होगा। गीत गाता चल कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 10:00। दिन के 11 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रगीत 11:30 पर। दोपहर 12 तेलुगु कार्यक्रम में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर चर्चा पत्रिका कार्यक्रम और सुगम संगीत भी आप सुन सकेंगे। मलयालम कार्यक्रम में 12:30 पर कृषि संबंधी कार्यक्रम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह चर्चा भी आप सुन पाएंगे। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप भूपेंद्र और मिताली सिंह को सुन सकेंगे। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम 1:30 पर। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के पश्चात प्राइमरी चैनल पर पहली सभा का समापन होगा, लेकिन 100.9 MHz FM पर हमारा स्थानीय प्रसारण जारी रहेगा, जिसमें फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे नॉन स्टॉप म्यूजिक। और दोपहर बाद 3:30 पर होगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 निकोबारी कार्यक्रम से, जिसमें साइलस मैथ्यू द्वारा प्रस्तुत गीत और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर चर्चा भी आप सुन सकेंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 4:30 पर कलाकार होंगे पंकज उदास, आशा भोसले और अशोक खोसला। हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा शाम 4:40 पर। बहारों की शाम कार्यक्रम का आप लुत्फ उठा पाएंगे 4:45 पर। किसान वाणी कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के परियोजना अधिकारी श्री सुरेंद्र नाथ सिंह से बातचीत का विषय रहेगा ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास में स्वयं सहायता समूह। 6:30 पर शाम बहार कार्यक्रम का आप आनंद ले पाएंगे। 7:30 पर युवाणी के तहत कार्यक्रम होगा देश की शान और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर चर्चा भी आप सुन सकेंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे चित्रपट संगीत रात 8 और रात 10

बजे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा संदेश आते हैं व साथ ही विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर मनी टॉक और रात 9:45 पर मंथन कार्यक्रम आप सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार आप सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: निष्ठेत। भारतेन आर्थिक जगति पुनः कीर्तिमानं रचितम्। अस्य वित्तवर्षस्य अप्रैल जून त्रैमास्यां देशस्य वास्तविक सकल गृहोत्पादः 7.8% अवर्धत। प्रधानमन्त्री मोदी प्रावोचत् यद् वैश्विक समाह्वानानां सम्मुखीकरणं विधाय अपि भारतेन एषा महती उपलब्धिः समर्जिता। चतुर्थः भारत जर्मनी पर्यावरण मञ्चः अद्य नवदेहल्यां निर्वहिष्यते। अस्य मञ्चस्य मुख्यमुद्देश्यं पर्यावरणसङ्कटस्य जलवायुपरिवर्तनस्य च समाह्वानानां सम्मुखीकरणाय द्विपक्षीयसम्बन्धान् सुदृढं कर्तुमस्ति। केन्द्रीयमन्त्री भूपेन्द्र यादवः जर्मन् मन्त्रिणा कार्स्टन् श्नाइडर् इत्यनेन सह अस्य सम्मेलनस्य सह अध्यक्षतां विधास्यति। फुटबॉल इत्येतस्यां क्रीडायाम् एषमः अण्डर 20 एशिया कप इत्यस्यां चषक स्पर्धायां भारतेन ह्यः ताश्कन् नगरे सीरिया देशम् 1-0 इति अंकान्तरालेन पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार।
2: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 7:01 हुए हैं, लीजिए सुनिए जन सूचनाएं। आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 1.0 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 87% और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 30.6 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय 5:09 पर हुआ व सूर्यास्त का समय रहेगा 5:30। अब जायजा लेते हैं उड़ान संबंधी जानकारी का। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान उड़ान संख्या 2937 दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और यात्री विमान उड़ान संख्या 2936 श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए अपनी वापसी उड़ान भरेगा दिन के 11:40 पर। श्रोताओं, ये थी एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी।

श्रोताओं, आपको फिर से बता दें, सवेरे 7:15 पर देशभक्ति फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी का आप आनंद ले पाएंगे। व साथ ही विविध भारतीय मुंबई से होगा प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सात बजकर 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में खेल जगत कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारी का विषय रहेगा ब्रिस्क वॉकिंग। सवेरे 9:00 आप आनंद ले पाएंगे फिल्मी गीतों से सजे कार्यक्रम तराने सुहाने का। गीत गाता चल कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 10:00। जन सूचनाएं समाप्त हुई। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 MHz पर। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन। इस ब्रेक के बाद

मुख्य समाचार। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा 2026 का उद्घाटन करेंगे। दक्षिण अंडमान जिला पुलिस की ओर से सी पोर्ट इमिग्रेशन प्रक्रियाओं पर व्यवहारिक प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। अकादमिक व इंटर्नशिप पहलों को जारी रखने के उद्देश्य से आर्काइवल प्रबंधन इंटर्नशिप की अवधि को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। और भारतीय स्टेट बैंक RSETI की ओर से 31 दिवसीय लाइट मोटर व्हीकल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

सुबह के समाचारों के साथ मैं जीनत बीबी। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना और कपड़े के थैलों और दोबारा प्रयोग वाली बोतलों के उपयोग को बढ़ावा देना है। यह पखवाड़ा 15 सितंबर तक चलेगा। उर्वरक विभाग ने कहा कि इस राष्ट्रव्यापी अभियान का लक्ष्य भौतिक और डिजिटल दोनों कार्यस्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना और कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार लाना है। विभाग ने कहा कि इस वर्ष भौतिक स्वच्छता के साथ डिजिटल स्वच्छता और अभिलेख प्रबंधन को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है ताकि प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके और ई फाइलिंग प्रणाली को और मजबूत किया जा सके। इस पहल के अंतर्गत विभाग के ई कार्यालय और डिजिटल फाइलिंग प्रणालियों को सुव्यवस्थित किया जाएगा, जिसमें ई कार्यालय प्रणाली में लंबित ई फाइलों की समीक्षा करना, निपटाए गए मामलों को डिजिटल रूप से बंद करना या संग्रहित करना और डेटाबेस को व्यवस्थित करना शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कल रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुआयामी मंच पीएम प्रगति के अंतर्गत टीबी उन्मूलन प्रयासों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए अंतर मंत्रालयीय समन्वय को मजबूत करने पर बल दिया गया। दक्षिण अंडमान जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से 4 सितंबर तक 5 दिवसीय सी पोर्ट इमिग्रेशन प्रक्रियाओं पर व्यवहारिक प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य इमिग्रेशन से संबंधित पुलिसकर्मियों की क्षमताओं और परिचालन तैयारियों को मजबूत करना है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन कल पुलिस अधीक्षक श्वेता के सुगथन ने किया। यह कार्यक्रम ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन चेन्नई के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक ने इस बात पर जोर दिया कि इमिग्रेशन संबंधी जिम्मेदारियों के प्रभावी निष्पादन के लिए केवल नियमों का ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यावहारिक समझ, पेशेवर दक्षता और मैदानी स्तर पर समन्वित कार्रवाई आवश्यक है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों, विदेशी क्रू सदस्यों और जहाजों से जुड़ी इमिग्रेशन औपचारिकताओं को सुव्यवस्थित, कुशल, एक समान और कानूनी रूप से अनुपालन योग्य तरीके से पूरा करने पर बल दिया। कार्यक्रम में मध्योत्तर अंडमान और निकोबार जिलों के 20 पुलिसकर्मियों के साथ साथ इमिग्रेशन एवं फॉरेनर्स शाखा के कर्मी भाग ले रहे हैं। समाज कल्याण निदेशालय की ओर से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों तक यूनिक डिसेबिलिटी आईडी योजना के तहत हाल ही में स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप में जागरूकता, सहपंजीकरण एवं नवीनीकरण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर निदेशालय के राज्य समन्वयक ने प्रतिभागियों को यूडीआईडी योजना के महत्व, लाभ, मूल्यांकन प्रक्रिया, दिव्यांगता प्रमाणन, पंजीकरण व नवीनीकरण प्रक्रियाओं और ऑनलाइन आवेदन प्रणाली के बारे में जानकारी दी। इस दौरान पात्र दिव्यांगजनों के लिए नए यूडीआईडी कार्ड का पंजीकरण और पुराने कार्ड धारकों के नवीनीकरण की सुविधा प्रदान की गई। इस पहल का उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी सेवाओं तक पहुँच के साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं,

लाभों और सेवाओं के बारे में जानकारी देना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, आर्काइवल प्रबंधन इंटर्नशिप और प्रशिक्षण कार्यक्रम। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म X, YouTube, Facebook और Instagram पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंडमान निकोबार अभिलेखागार ने हाल ही में द्वीप समूह से BA इतिहास की पढ़ाई पूरी करने वाले स्नातकों के लिए आर्काइवल प्रबंधन में अल्पकालिक मासिक मानदेय आधारित इंटर्नशिप कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं को अभिलेखागार से जुड़े कार्यों का व्यवहारिक अनुभव देना है। 1 जून से शुरू हुए इस 3 महीने के इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षुओं को ऐतिहासिक व प्रशासनिक अभिलेखों के संरक्षण, रखरखाव, बुनियादी मरम्मत व बाइंडिंग, डिजिटलीकरण, डेटा एंट्री, रिकॉर्ड प्रबंधन और अनुसंधान व दस्तावेजीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इंटर्नशिप को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले प्रतिभागियों को इंटर्नशिप प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। भविष्य में भी इस प्रकार की अकादमिक व इंटर्नशिप पहलों को जारी रखने के उद्देश्य से अभिलेखागार सचिव ने इस इंटर्नशिप की अवधि को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने यूटी आत्मा के सहयोग से हाल ही में स्वराज द्वीप के एक किसान के खेत में अजोला उत्पादन पर एक प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान किसानों को अजोला की खेती के तरीकों, इसमें मौजूद उच्च प्रोटीन सामग्री और पशुधन के चारे के रूप में इसके पोषण संबंधी लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और अजोला के तैयार करने के लिए गड्ढे बनाने और उनके रख रखाव की सरल तकनीकों का व्यवहारिक प्रदर्शन किया गया। इस पहल का उद्देश्य पशुपालक किसानों को घरेलू और कृषि स्तर पर अजोला की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि पूरे वर्ष पशुओं के लिए पौष्टिक हरे चारे की निरंतर उपलब्धता बनी रहे। भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की ओर से कल 31 दिवसीय लाइट मोटर व्हीकल प्रशिक्षण कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन भारतीय स्टेट बैंक स्थानीय प्रधान कार्यालय कोलकाता के मुख्य महाप्रबंधक आर नटराजन ने झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने प्रतिभागियों को इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 30 प्रशिक्षुओं ने नामांकन कराया है, जिनमें से 23 महिलाएं हैं। राष्ट्रीय मादक द्रव्य मांग न्यूनीकरण कार्य योजना के तहत अंडमान निकोबार पुलिस तथा ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थान और शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय के सहयोग से कल स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप में नशा मुक्ति और मांग न्यूनीकरण पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों, कर्मचारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। इस दौरान जागरूकता रैली, संवाद सत्र जैसी गतिविधियां आयोजित की गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई किसी एक विभाग की नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा 2026 का उद्घाटन करेंगे। दक्षिण अंडमान जिला पुलिस की ओर से सी पोर्ट इमिग्रेशन प्रक्रियाओं पर व्यवहारिक प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। अकादमिक व इंटर्नशिप पहलों को जारी रखने के उद्देश्य से आर्काइवल प्रबंधन इंटर्नशिप की अवधि को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और भारतीय स्टेट बैंक RCT की ओर से 31 दिवसीय लाइट मोटर व्हीकल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

इस कार्यक्रम में मैं शवाना आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारा भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि रंगों, संस्कृतियों और रिश्तों का खूबसूरत संगम है। यहाँ भाषाएं अलग है, पहनावे अलग है, लेकिन दिल में बसने वाला तिरंगा एक ही है। यही विविधता हमारी सबसे बड़ी ताकत है।

दोस्तों, दुनिया में कहीं भी चले जाएं, दिल को सुकून सिर्फ अपने हिंदुस्तान में मिलता है। इस देश की मिट्टी में ही कुछ खास बात है। यहाँ हर रंग अलग है, फिर भी तिरंगा सबको जोड़ता है। भारत हमारी जमीन नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं का नाम है। इसलिए दिल है हिंदुस्तानी और हमेशा रहेगा।

दोस्तों, वतन की मोहब्बत भी कितनी खूबसूरत होती है। दूर रहकर भी इसकी याद दिल के करीब रहती है। इसकी मिट्टी की खुशबू हमेशा अपनी सी लगती है। इसके तिरंगे को देखकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। बस दिल से यही दुआ निकलती है कि भारत हमेशा खुश रहे।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम।

दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि चलते रहो तो रास्ते हजार मिलेंगे, बढ़ते रहो तो मुकाम जरूर मिलेंगे। किस्मत के भरोसे मत बैठना, किस्मत के भरोसे मत बैठना, मेहनत करोगे तो मौके तमाम मिलेंगे। इस कार्यक्रम में मैं शबाना आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ।

दोस्तों आपको बता दें, भारत में 1 सितंबर से राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत होती है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य और संतुलित आहार के लिए पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अच्छी सेहत की शुरुआत सिर्फ दवाइयों से नहीं, सही पोषण से होती है। स्वाद के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और पौष्टिक भोजन को अपनी आदत बनाएं, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और स्वस्थ जीवन का आधार छिपा है।

0: बप्पी लहरी और साथियों की आवाज़ों में ये था आपकी खातिर फिल्म का गाना। श्रोताओं, इस गीत के बाद अब रुख करते हैं खेल जगत कार्यक्रम की ओर।
1: नमस्कार, खेल जगत के आज के संत में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज कुछ बातें पैदल चलने या वॉकिंग के संदर्भ में। श्रोताओं, आज समाज में कई ऐसी बीमारियां पैर जमा चुकी हैं जिन्हें मोटे तौर पर लाइफस्टाइल डिजीजेस कहा जाता है। समाज का कोई भी तबका इन बीमारियों से अछूता नहीं है और अब ये बीमारियां जन स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन चुकी हैं। डायबिटीज, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, हृदय रोग आदि बीमारियां हमारी जीवन शैली और व्यायाम में कमी का नतीजा हैं। व्यायाम वैसे तो कई प्रकार के हो सकते हैं। पैदल चलना या वॉकिंग व्यायाम का सबसे सरल तरीका है। ये एक ऐसा एरोबिक एक्सरसाइज है जिसे हर कोई कर सकता है। स्वास्थ्य संबंधी बढ़ती जागरूकता के चलते सुबह और शाम कई लोग पैदल चलते देखे जा सकते हैं। लेकिन व्यायाम के लिए कैसे चलना चाहिए? क्या महज टहलना व्यायाम हो सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि तेज चलने या ब्रिस्क वॉकिंग से ही वांछित फायदा हो सकता है। अमेरिका स्थित सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल CDC के अनुसार ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब है 1 घंटे में 5 किलोमीटर या 12 मिनट में 1 किलोमीटर चलना। हालांकि एकदम तंदुरुस्त लोगों के लिए ये पर्याप्त नहीं है। 1 घंटे में 6.5 किलोमीटर चलने से ही ऐसे लोग मॉडरेटली इंटेंस एक्सरसाइज जोन में आ सकते हैं। तेज चलने की गति अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। मोटे तौर पर ऐसा समझा जा सकता है कि ब्रिस्क वॉकिंग के लिए आपको इतना तेज चलना चाहिए कि आपकी सांसें सामान्य से तेज चलें। आप ठीक से बात तो कर सकें पर स्थिति में आप गाना ना गा पाएं। CDC के अनुसार मध्यम व्यायाम की स्थिति में हृदय की गति सामान्य से 50 से 70% तक ज्यादा हो सकती है। आइए देखें वॉकिंग के क्या क्या संभावित फायदे हैं। पैदल चलने से हृदय संबंधी रोगों से हम बहुत हद तक दूर रह सकते हैं। इस तरह के व्यायाम से रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है जो कि हृदय संबंधी रोगों के लिए जिम्मेदार होता है। पैदल चलने से हृदय, फेफड़े व मांसपेशियां मजबूत होती हैं।

एक मजबूत हृदय से हृदय गति बढ़ती है और शरीर के विभिन्न अंगों तक खून पर्याप्त मात्रा में पहुंचता है। ब्रिस्क वॉकिंग से आप प्रतिदिन 200 कैलोरीज तक बर्न कर सकते हैं और इस तरह शरीर में फैट कम होता है। अध्ययनों से पता चलता है कि नियमित रूप से पैदल चलने से आपका शारीरिक वजन सामान्य रहता है, जिससे बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI ठीक रहता है और रक्तचाप सामान्य होता है। पैदल चलने से मांसपेशियों में ज्यादा गति होती है, फलस्वरूप मसल सेल्स द्वारा ज्यादा ग्लूकोज का अवशोषण होता है, जो कि मधुमेह के रोगियों के लिए काफी फायदेमंद होता है। शोधों से यह बात सामने आई है कि ब्रिस्क वॉकिंग से आहार में मौजूद कैंसर कारक अवयवों को आंतों के संपर्क में आने का कम समय मिलता है, जिससे कॉलोन कैंसर का खतरा शुरू से ही कम हो जाता है। नियमित रूप से चलने से न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहता है, बल्कि मानसिक रूप से भी हम तंदुरुस्त रहते हैं। इससे हम तनाव कम महसूस करते हैं। पैदल चलने से हमारे मस्तिष्क तक खून का प्रवाह और फलस्वरूप ऑक्सीजन की आपूर्ति ज्यादा होती है, जिससे मस्तिष्क की सक्रियता बढ़ जाती है। खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों में ये डेमेंशिया और अल्जाइमर्स आदि बीमारियों के प्रबंधन में काफी कारगर सिद्ध हुआ है। किसी भी कार्य से वांछित परिणाम हमें तभी मिलते हैं जब उसे सही ढंग से किया जाए। पैदल तो हम सभी चलते हैं, तो इसमें सही तरीके का क्या सवाल है? जी हाँ, इसमें भी बहुत सारी बातें हैं जिन पर की ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर करना है। अगर आप हृदय संबंधी रोग, उच्च रक्तचाप आदि के मरीज हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके लिए सुरक्षित व्यायाम की हद क्या है। आप कितनी तेजी से चल सकते हैं, कितनी देर चल सकते हैं और क्या सावधानी आपको बरतनी है। कपड़े ऐसे पहनें जिसमें आप आराम महसूस करें। बहुत सारे लोग चप्पल पहनकर वॉकिंग करते हैं, जो कि गलत है। ब्रिस्क वॉकिंग जूते पहनकर ही करने चाहिए और जूते भी ऐसे हों जो हल्के तथा आरामदायक हो। आप आमतौर पर जो जूते पहनते हैं उससे एक नंबर बड़े जूते का प्रयोग वॉकिंग के लिए करें तो बेहतर होगा। जूतों के सोल बहुत कड़े नहीं होने चाहिए। अक्सर हम तेज चलने की कोशिश करते हैं तो लंबे लंबे कदम रखते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। कदम छोटे छोटे और तेज होने चाहिए। चलते वक्त जब आपके कदम जमीन पर पड़ते हैं तो एक रोलिंग मोशन होना चाहिए, यानी पैर की एड़ी पहले जमीन पर पड़नी चाहिए और फिर अगला हिस्सा यानी टो। अगर आपके पैर सपाट जमीन पर पड़ेंगे तो इससे आपके शिन और घुटनों में दर्द होगा। चलते वक्त दोनों हाथ भी पैरों के साथ आगे पीछे होने चाहिए, लेकिन अगर आप अपने हाथों को सीधे आगे पीछे ले जाएंगे तो इससे आपके चलने की गति प्रभावित होगी। सही तरीका यह है कि आप चलते वक्त अपने हाथों को 90 डिग्री एंगल पर मोड़िए और आगे पीछे नेचुरल तरीके से स्विंग कीजिए। चलते वक्त सिर का पोस्चर भी ठीक होना चाहिए। कुछ लोग सिर झुकाकर अपने पैरों को देखते हुए चलते हैं, जो कि गलत तरीका है। चलते वक्त सिर हमेशा जमीन के समानांतर होना चाहिए और आपकी आंख आगे 10 से 20 फीट तक फोकस होने चाहिए। सिर के सही पोजीशन से आप अपने बैक, गले और कंधों में होने वाले संभावित समस्याओं को रोक सकते हैं। सामने की ओर 5 डिग्री से ज्यादा झुककर चलना भी वॉकिंग का गलत तरीका है। सामने या पीछे की ओर झुककर चलने से बैक पेन हो सकता है। चलते वक्त आपका पोस्चर बिल्कुल सामान्य होना चाहिए। चलने से पहले, चलते वक्त और चलने के बाद पर्याप्त पानी नहीं पीना भी समस्या पैदा कर सकता है। ब्रिस्क वॉकिंग शुरू करने से 10 मिनट पहले एक ग्लास पानी पी लेना उचित रहता है। मौसम और कितनी देर आप चलते हैं, इसके आधार पर चलते वक्त भी अगर पानी की जरूरत हो तो पी लेना चाहिए। वॉकिंग समाप्त करने के बाद एक या दो ग्लास पानी पी लेना ठीक रहता है। और हाँ, आखिरी सलाह, ओवरडू मत कीजिए। अगर आप बहुत थकान महसूस कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन लग रहा है, जोड़ों और शरीर में काफी दर्द हो रहा है, तो सावधान, आप अपनी क्षमता की सीमा को लांघ रहे हैं। तो श्रोताओं, ये तो थी कुछ बातें पैदल चलने या ब्रिस्क वॉकिंग के संदर्भ में। उम्मीद करते हैं कि व्यायाम का ये तरीका आप जरूर अपनाएंगे और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो इस काम को

0: भी ढंग से करेंगे ताकि वांछित फायदा हो सके। खेल जगत के आज के इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार।
1: श्रोताओं, खेल जगत कार्यक्रम के तहत आज जानकारी का विषय था ब्रिस्क वॉकिंग। जानकारी दे रहे थे शिबू जॉर्ज। श्रोताओं, अब समय हो चला है ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
3: फसा। अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में ये था जो जीता वही सिकंदर फिल्म का गाना, जिसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने व संगीत से सजाया था जतिन ललित ने। अब आपको सुनवाते हैं आनंद बख्शी का लिखा एवं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ बद और बदनाम फिल्म का गाना। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, शब्बीर कुमार और साथियों की।

राहुल शर्मा के संगीत निर्देशन में तैयार ये था मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म का गाना। शब्दकार आनंद बख्शी व स्वर दिया था लता मंगेशकर और सोनू निगम ने। श्रोताओं, इसके साथ ही गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, आज की मेहनत कल की पहचान बनेगी, हर कोशिश एक नई उड़ान बनेगी। मत रुकना रास्तों की कठिनाइयों से, क्योंकि आपकी लगन ही आपकी सबसे बड़ी शान बनेगी। अब दीजिए इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो दोस्त शबाना को इजाज़त।

438 6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है। आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला? मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
1: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया और अर्जेंटीना के फुटबॉलर नियोलन मेसी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, 21 साल के शानदार करियर का अंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में भारत, चीन और रूस सहित 10 अन्य सदस्य देश शामिल हैं।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। भारत आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड अपनाए जाने के हमेशा से खिलाफ रहा है। भारत का मानना है कि क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए सदस्य देशों के बीच संपर्क बढ़ना जरूरी है। हालांकि संपर्क परियोजनाओं के साथ सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत सदस्य देशों के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने और स्टार्टअप व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर देता रहा है। भारत का मानना है कि युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और उद्यमिता क्षेत्रीय विकास और सहयोग को नई गति दे सकती है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
4: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
2: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
4: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा, जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
2: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली

0: तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रही थी। इस बीच अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने कहा कि विकास के ये आंकड़े ट्रंप प्रशासन के भारत को एक तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं।
1: मुझे लगता है कि ये आंकड़े उस बात की पुष्टि करते हैं जो राष्ट्रपति और प्रशासन शुरू से ही कहते आ रहे हैं। भारत एक गतिशील, मजबूत और मुश्किलों का सामना करने में सक्षम अर्थव्यवस्था वाला देश है, और मुझे लगता है कि जो जीडीपी रिपोर्ट या आंकड़े सामने आए हैं वे फिर इस बात को पुख्ता करते हैं कि भारत यहाँ तेजी से उभरती हुई एक बड़ी ताकत है।
0: अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की 2 दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अमेरिका की वित्त मंत्री स्कॉट बिसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है।
2: हमने अमेरिका को पूंजी के प्रवाह और व्यवसायियों को विकसित करने के लिए दुनिया का प्रमुख केंद्र बनाया है। हमने लाखों कामकाजी परिवारों को ऐतिहासिक कर राहत दी है और ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया की महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त किया है। ये उपलब्धियां विकास के अगले दौर को आकार दे रही हैं और हमने तो अभी शुरुआत ही की है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: Samachar Prabhat mein aapka phir swagat hai. भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए उसके निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है।
2: भारत ने दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। यह बयान हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि संधि को स्थगित करने के भारत के कारण इसके निलंबन या समाप्ति को उचित नहीं ठहराते। पैनल ने भारत को 1960 के जल बंटवारे समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन जारी रखने का आह्वान किया। हालांकि भारत ने इस फैसले को खारिज करते हुए तर्क दिया कि मध्यस्थता पैनल की स्थापना ही संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हुए की गई थी। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विकास नापा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंप का उपयोग कर रहे हैं।
4: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 939 हो चुकी है और 3,925 लोग अब भी लापता हैं। जल विद्युत परियोजनाओं से 279 लोगों को बचाया जा चुका है। वहीं देश भर के 11,000 से अधिक लोगों को भी बचाया गया है। भारत ने बचाव अभियान और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल भेजे हैं। बाढ़ से 11 जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नेपाल ने कई देशों से फ्रीजर, DNA परीक्षण उपकरण, ड्रोन पुल और विशेष सुरंग बचाव उपकरण सहित सहायता मांगी है। 18 भारतीय फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम DNA पहचान में सहायता कर रही है। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: मौसम विभाग ने आज उड़ीसा के सुंदरगढ़ और क्योंझर के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट, 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट

0: और 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
1: उड़ीसा में एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़ और केंदुझर के लिए रेड वार्निंग जारी की है। झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू है, जबकि 12 जिलों येलो वार्निंग में है। ये बारिश गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और उससे सटे उड़ीसा के उत्तरी तटीय इलाकों में बने वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के कारण हो रही है। IMD का अनुमान है कि कल के बाद बारिश कम हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार भुवनेश्वर।
0: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच सम्मेलन आज नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 28 अगस्त तक खरीफ फसलों के अंतर्गत 171 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बुआई हो चुकी थी। मंत्रालय ने बताया कि धान की खेती 414 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है, जबकि दलहन की बुआई 115 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हुई है। नागालैंड विधानसभा का 9वां सत्र आज शुरू होगा। इस सत्र में फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बिल 2026, कई सरकारी विधेयक और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने इस साल जनवरी में हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन पर हुए विस्फोट के सिलसिले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले अभिकरण ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तेजाब की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार से इसकी बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बारे में जानकारी मांगी है। ये निर्देश वर्ष 2013 में दिए निर्देश के बावजूद तेजाब की आसानी से उपलब्धता पर चिंताओं के बीच आया है। न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर तेजाब हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप, 2 कोपा अमेरिका खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप क्वालिफायर में भारत ने सीरिया को 1-0 से हरा दिया है। ताशकंद में कल सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मैच बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, किर्गिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी बोले, यूक्रेन युद्ध का अंत आवश्यक। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे ले जाता है। जनसत्ता की सुर्खी है, किर्गिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री की ईरान के राष्ट्रपति से भी वार्ता और कूटनीति से पश्चिम एशिया के संघर्ष के समाधान की अपील की। अमर उजाला के शीर्षक है, वैश्विक बाधाओं के बाद भी रफ्तार में भारत, विकास दर 7.8% पहली तिमाही में भारत की GDP सबसे तेज, खपत और निर्यात ने संभाला मोर्चा। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, अगर हिंदू जागते हैं तो दुनिया जागती है, मानवता की निस्वार्थ सेवा के जरिए भारत विश्वगुरु बना। राजस्थान पत्रिका ने समुद्र में शक्ति शीर्षक से सचित्र दिया है, INS निपुण नौसेना में शामिल, समुद्र में गहराई तक मदद पहुंचाने में सक्षम है स्वदेशी पोत।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की GDP 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7%

0: strong and resilient economy. New Delhi rejects Court of Arbitration award on Indus Water Treaty. Nepal rescuers blast hillside in search of hydropower workers as families wait anxiously. And Lionel Messi announces retirement from international football, ending legendary 21-year career with Argentina national team. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 8:31 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज के हमारे फनकार हैं पिनाज मसानी और रानू मुखर्जी। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं पिनाज मसानी की गाय चंद गजलों से।

श्रोताओं, अभी आप सुगम संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे। आज के हमारे कलाकार थे विनाज मसानी और रानू मुखर्जी। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का पहला गीत ब्लैकमेल फिल्म से स्वर दिया है किशोर कुमार ने, बोल राजेंद्र किशन के हैं व धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम का अगला गीत मुखद्दर का सिकंदर फिल्म से स्वर दिया है किशोर कुमार ने। गीतकार अनजान व संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

शैलेंद्र का लिखा एवं शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ आइए सुनते हैं आए मिलन की बेला फिल्म का गाना। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में तैयार, आइए सुनते हैं आशिक हूँ बहारों का फिल्म का गीत। शब्दकार आनंद बख्शी व स्वर दिया है किशोर कुमार ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
1: सीमा, सीमा उठो।
2: क्या हुआ?
1: चेकअप के लिए जाना है ना।
2: सोने दो ना।
1: उठो।
2: अगले हफ्ते चल पड़ते, थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा।
3: गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके।
4: समय का मोल
1: HIV पे कंट्रोल।
3: गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं।
0: ब्रेक के बाद तराने सुहाने कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है।

और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत और कौन फिल्म से, स्वर दिया है किशोर कुमार ने, गीत रचना अमित खन्ना की व धुन बनाई है बप्पी लहरी ने।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 9:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत इस कार्यक्रम के तहत आज हम आपको एस गोविंद राजन का कर्नाटक शैली में गायन सुनवा रहे हैं। इनके साथ वॉयलिन पर एस आर भास्करन, मृदंगम पर वल्लूर रामाभद्रन, घटम पर के एम वैद्यनाथ तथा

मोरशिंग पर एम आर पर के स्वामी ने संगति की है। तो आइए पहले सुनते हैं एस गोविंद राजन का कर्नाटक शैली में गाया राग जया मनोहरी, जो आदि ताल में निबद्ध है।

ये था राग जया मनोहरी, और अब सुनिए आदि ताल में निबद्ध राग नारायणा गौला।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद भी।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: फसा। अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं एस गोविंद राजन का कर्नाटक शैली में गाया राग दरबार, जो आदि ताल में निबद्ध है।

0: ये था राग दरबार, और अब अंत में सुनिए राग कल्याणी, जो रूपक ताल में निबद्ध है।
1: के माद्री सोते।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप एस गोविंद राजन का कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं तुम्हारी सुल्लू इस फिल्म के एक गीत से। इस गीत को गाया है गुरु रंधावा ने।

आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में जब हैरी मेट सेजल, इस फिल्म का ये गीत धुन बनाई है प्रीतम ने।

क्रिएचर 3D। आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह ने। गीत एवं संगीत रचना टोनी कक्कर के हैं।

शांतनु मोइत्रा के संगीत निर्देशन में तैयार लीजिए अब सुनिए फिल्म परिणीता का ये गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में बोल स्वानंद किरकिरे के हैं।

अब पेश है इरशाद कामिल का लिखा एवं प्रीतम का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत, के और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है खट्टा मीठा।

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत। इस गीत को गाया है फरहान अख्तर और साथियों ने। बोल जावेद अख्तर के हैं, वधुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने।

श्रोताओं, इस समय आप आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से सुन रहे हैं फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं पलक मुच्छाल और यशराज कपिल की आवाज़ों में पुलिस गिरी, इस फिल्म का ये गीत।

आइए अब सुनते हैं केशव की आवाज़ में फिल्म एनिमी का ये गीत। मंथन के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है गौरव दास गुप्ता ने।

चिरंतन भट्ट की संगीत निर्देशन में तैयार लीजिए अब सुनिए अंकुर अरोड़ा मर्डर केस इस फिल्म का ये गीत। इस गीत को गाया है देव नेगी और दीपाली सेठ ने, बोल कौसर मुनीर के हैं।

अब सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में आशिकी टू। इस फिल्म का ये गीत गीत एवं संगीत रचना मिथुन के हैं।

अभी आप मीका सिंह की आवाज़ में ये गीत सुन रहे थे। फिल्म का नाम था हम हैं राही कार के। इसी के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल अब यहीं पर संपन्न हुआ।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1362वीं कड़ी।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का आज के उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आज एनसीईआरटी के स्थापना दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं विमलेश आप सबका स्वागत करती हूं। नमस्कार
3: श्रोताओं, नमस्कार। आइए सुनते हैं पिछले सप्ताह दिए गए विषयों पर एक स्लोगन, जिसे भेजा है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू जी ने लिखा है।
2: रेडियो वाला जमाना अलग था, आवाज से रिश्ते जुड़ते थे। अब फोन वाला जमाना है, फोटो से लाइक जुड़ते हैं। फोन छोटा है जरूर, पर दुनिया बड़ी दिखाता है। अगर इसे विवेक से इस्तेमाल करें तो परायों को भी अपना बना देता है।
3: तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचारों और संदेशों के लिए। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी। अगला संदेश हमें मिला है गांव ढाणी, कुतुबपुर, जिला हांसी।

0: हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना लिखते हैं,
1: जैसे कार्यक्रम ज्ञानवर्धन के साथ हमारी गौरवशाली विरासत और महान नायकों से परिचित कराने का सराहनीय प्रयास है। सादर धन्यवाद।
0: आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मार्मिक प्रेरक प्रसंग। तो विमलेश जी, करते हैं शुरुआत और बात करते हैं एक वीर बालक की जिसने देश की आजादी की लड़ाई में अपना अतुल्य योगदान दिया।
1: जी जी जी श्रोताओ, आज हम जिस आजादी की हवा में खुलकर सांस ले रहे हैं उसकी कीमत सिर्फ बड़े क्रांतिकारियों ने ही नहीं बल्कि देश के नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी चुकाई है। आज हम आपके लिए ओडिशा के ढेंकानाल के एक ऐसे ही बहादुर बालक बाजी राउत की गाथा लेकर आए हैं जिसकी बहादुरी के आगे कहते हैं कि मौत भी छोटी पड़ गई थी।
0: श्रोताओ, बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को नीलकंठपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। उनकी माँ बहुत ही कठिन परिस्थितियों में परिवार का पालन पोषण करती थी। बाजी नदी पर नाव चलाने का काम करते थे।
1: श्रोता मित्रों, बात है 11 अक्टूबर 1938 की। ढेंकानाल में अंग्रेजों के खिलाफ जन

0: कहते हैं कि मौत भी छोटी पड़ गई थी।
1: श्रोताओं, बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को नीलकंठपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। उनकी माँ बहुत ही कठिन परिस्थितियों में परिवार का पालन पोषण करती थी। बाजी नदी पर नाव चलाने का काम करते थे।
0: श्रोता मित्रों, बात है 11 अक्टूबर 1938 की। ढेंकानाल में अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन जोरों पर था। माहौल ये था कि क्या बड़े, क्या जवान, क्या बच्चे, सभी बड़ी सक्रियता से भाग ले रहे थे। स्थानीय प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। उनका एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी। अंग्रेजी सेना को जब इन गतिविधियों की भनक लगी तो वो पूरे दल बल के साथ वहां पहुंचे।
1: उन्होंने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू की, जिसमें कई लोग मारे गए।
0: जी,
1: वहां की मिट्टी शहीदों के रक्त से लाल हो गई। किसी को भी नहीं बख्शा गया और आंदोलन का क्रूरता पूर्वक दमन कर दिया गया। ये समाचार जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गया
0: और दूर दराज के गांवों से भी ग्रामीण आने लगे। भीड़ बढ़ने लगी, नारे लग रहे थे। अंग्रेज सिपाही निर्दोष गांव वालों पर गोलियां चलाने के बाद वहां से भागने की फिराक में थे, लेकिन उन्हें अपनी छावनी तक सुरक्षित पहुंचने के लिए ब्राह्मणी नदी पार करनी थी। वे नदी के घाट की ओर चल दिए।
1: नदी के घाट पर 12 साल का एक बच्चा बाजी राउत अपनी छोटी सी नाव की रखवाली कर रहा था।
0: जी,
1: वह प्रजामंडल का सदस्य था। उसे प्रजामंडल द्वारा सख्त निर्देश मिला था कि किसी भी अंग्रेज को नदी पार करने में कोई सहायता ना दें।
0: जी,
1: रात का समय था और भारी वर्षा हो रही थी।
0: अंधेरी रात और मूसलाधार वर्षा के बीच अंग्रेजों की फौज वहां आ पहुंची। मेजर ने चिल्लाकर बाजी को हुक्म दिया,
1: ए लड़के, अपनी नाव निकाल और हमें नदी के उस पार ले चल।
0: बाजी की जगह कोई और होता तो बंदूक देखकर डर जाता, लेकिन उस बच्चे की आंखों में घृणा और क्रोध के मानो अंगारे दहक रहे थे। उसने दो टूक जवाब दिया,
1: तुमने मेरे गांव वालों का खून बहाया है, मैं तुम्हें अपनी नाव छूने तक नहीं दूंगा।
0: अंग्रेज हैरान थे कि एक छोटे से बच्चे में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। मेजर ने बंदूक तानकर धमकाया, लेकिन बालक बाजी टस से मस नहीं हुआ। जब बाजी ने झुकने और उनकी बात मानने से साफ मना कर दिया तो एक अंग्रेज सिपाही ने अपनी बंदूक की बट से उसके सिर पर जोर से वार किया।
1: बाजी का सिर फट गया, खून की धार बह निकली, लेकिन वो एक इंच भी पीछे नहीं हटा। उसने अपनी आखिरी सांस तक चिल्ला चिल्ला कर गांव वालों को सावधान करना शुरू किया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के लोग नदी की ओर आने लगे।
0: बौखलाए अंग्रेजों ने उस 12 साल के मासूम के सीने में संगीनें उतार दी और गोलियों से उसे छलनी कर दिया। बाजी राउत शहीद हो गए। लेकिन उस रात अंग्रेजों को नदी पार करने के लिए नाव नहीं मिली, उन्हें जान बचाने के लिए तैर कर भागना पड़ा।
1: जी हाँ श्रोताओ, शहीद भगत सिंह 23 साल के थे, खुदीराम बोस 18 साल के थे, लेकिन बाजी राउत सिर्फ 12 साल के थे। वो भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान सबसे कम उम्र के शहीद माने जाते हैं।
0: साथियों, आज के समय में हम 12 साल के बच्चों को छोटा और नादान समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बच्चे में असीमित क्षमता होती है। उस उम्र में इस बच्चे ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे दी थी। आज उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम भारत के सभी शहीदों को श्रद्धा से स्मरण करते हुए नमन करते हैं।
1: जी हाँ, उमंग कार्यक्रम की ओर से उन सभी शहीदों को हमारा नमन। श्रोताओ, आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स PDF टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए। आपको वहाँ कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
1: तो श्रोताओ, अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न, नोट कर लीजिए। हमारा प्रश्न है, बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था?
1: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं कार्यक्रम माई नेम।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बड़े मनोरंजक तरीके से एक मक्खी के बारे में बताता है जो अपना नाम ही भूल जाती है। वो अलग अलग पशु पक्षियों के पास जाती है और अपना नाम पूछती है। अंत में उसे अपने नाम का पता चल जाता है, लेकिन कैसे, आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में।
2: Once there was a little fly. One day he could not remember his name. He tried and

0: What do you hear? Can you recognize the sounds? Can you make these sounds? Note to the teacher. Help children find the meanings of their names as it is related to their identity.
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम My Name।
2: उस रात ऑफिस से निकलने में तुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे, मुझे समझने में एक सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
3: थकान या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग।
4: ये कार्यक्रम 20वीं सदी के महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और अंतरिक्ष भौतिकी के क्षेत्र में उनके महान योगदानों का उल्लेख करता है और साथ ही साथ दिव्यांगता से उनके जीवन पर्यंत संघर्ष की भी चर्चा करते हुए संदेश देता है कि दिव्यांगता शरीर से कहीं अधिक मन में होती है।
5: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
6: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
5: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।

0: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
0: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
0: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
2: Stephen, happy birthday to you!
3: Happy birthday to you, Stephen!
4: Thank you. How are you?
5: Happy birthday, Stephen! Thank you,
4: congratulations!
5: Thank you, John. Thank you so very much. Hi, yes. Martin. How are you?
2: Oh, fine.
5: Thanks for coming in. Please come in. Please.
3: Oh, sure. Yes. Why not?
2: Come.
3: Hey.
2: Come. John, please come here.
3: Oh, sure.
5: Join us for a drink, please.
1: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
3: हाँ

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ১৯৮৫ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था।

0: उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
1: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
1: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
2: प्रोफेसर डेनिस
3: जी,
2: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
3: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
2: ओह।
3: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
2: ये तो बड़ी दिलचस्प बात है, वाह, अति सुंदर। और शायद धीरे धीरे इसी भाषा और शब्द संग्रह ने एक धारा प्रवाह वैज्ञानिक भाषा का रूप ले लिया होगा।
3: बिल्कुल ठीक। और फिर उन शब्दों की ध्वनि को मानवीय आवाज में रिकॉर्ड करके हमने स्पीच सिंथेसाइजर में संग्रहित कर लिया।
2: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
3: जी।
2: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
3: तो लीजिए सुनिए।
4: टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड द आउटलुक फॉर द डिसेबल्ड। पीपल लाइक मी कैन नाउ मूव अराउंड इंडिपेंडेंटली एंड दे कैन कम्युनिकेट।
1: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
0: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
1: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
0: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
5: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
1: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
0: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
6: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं, जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो।

0: आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
1: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
2: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
3: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
4: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
1: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
3: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहां स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
1: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए दीजिए आज्ञा।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1362वीं कड़ी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11:30 में हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं कभी अलविदा ना कहना इस फिल्म के गीत से। इस गीत को गाया है सोनू निगम और अलका याग्निक ने। बोल जावेद अख्तर के हैं, वधुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने।

अब सुनिए पापोन की आवाज़ में दम लगा के हैशा। इस फिल्म का ये गीत बोल वरुण ग्रोवर के हैं, वधुन बनाई हैं अनु मलिक ने।

शांतनु मोइत्रा के संगीत निर्देशन में तैयार, लीजिए अब सुनिए लगे रहो मुन्ना भाई। इस फिल्म का ये गीत, इस गीत को गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने, बोल स्वानंद किरकिरे के हैं।

पेश है जावेद अख्तर का लिखा एवं जतिन ललित का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।

मैं हूं ना। आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत के और वसुंधरा की आवाज़ों में। बोल जावेद अख्तर के हैं, वधुन बनाई है अनु मलिक ने।

0: अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോ ഹെഡ്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, आतंकवादियों की भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष भारत ने शंघाई सहयोग संगठन सभ्यता संवाद मंच का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इसका पहला सत्र इस वर्ष भारत में आयोजित किया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयातित ऊर्जा और उर्वरकों पर देश की निर्भरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदर्शित की है। इसके बावजूद उसकी विकास दर पटरी से नहीं उतरती।

वित्त मंत्री ने भारत को एक जीवंत और प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था बताया जो बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कहा कि सरकार ने 2029 तक 3,00,000 करोड़ रुपए के वार्षिक रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज के दूसरे वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यान में श्री सेठ ने कहा कि देश का रक्षा उत्पादन लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया। सरकार ने बिना किसी शुल्क के आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। आयातकों को कच्ची चीनी की खरीद की तारीख से अधिकतम 2 महीने के भीतर इसे सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना अनिवार्य होगा। इससे पहले यह समय सीमा 31 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू आज शाम अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर

0: बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। आयातकों को कच्ची चीनी की खरीद की तारीख से अधिकतम 2 महीने के भीतर इसे सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना अनिवार्य होगा। इससे पहले यह समय सीमा 31 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू आज शाम अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा उड़ान AI-1121 अहमदाबाद से रवाना होगी। ये उड़ान दिल्ली होते हुए दुनिया भर में अलग अलग स्थानों तक यात्री सेवा उपलब्ध कराएगी। भारतीय रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के 21 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए 233 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस आधुनिक प्रणाली से पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नल के बुनियादी ढांचे में मजबूती आएगी। ये स्वदेशी स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। प्रवर्तन निदेशालय छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में कथित भर्ती घोटाले के सिलसिले में छत्तीसगढ़ में 7 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय के अनुसार इन परिसरों में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निजी सहायक के चंद्राकर का आवास भी शामिल है। आकाशवाणी FM गोल्ड की आज 25वीं वर्षगांठ है। ये चैनल वर्ष 2001 में 1 सितंबर को शुरू हुआ था। ये AIR FM गोल्ड के नाम सुविख्यात है। FM गोल्ड पर समाचार, समसामयिक मामलों और मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर कारोबार में आज वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 137 अंक बढ़कर 77,094 पर, जबकि निफ्टी मामूली रूप से बढ़त लेकर 24,092 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today addressed the 26th summit of the Shanghai Cooperation Organization in Bishkek, the capital of Kyrgyzstan. He called upon all member countries to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization, and safe havens. He said there can be no place for double standards on terrorism. More from our correspondent.
2: Addressing the SCO summit, Prime Minister expressed concern over the ongoing conflicts in different parts of the world. He said, wars and conflicts are not a solution to any problem and all disputes should be resolved through dialogue and diplomacy. The Prime Minister said, India supports all efforts that connects markets, facilitate trade and open new avenues for development. However, he stressed that such efforts must fully respect the sovereignty and territorial integrity of all countries. Addressing the summit, Mr. Modi said India had proposed the Shanghai Cooperation Organization Civilization Dialogue Forum last year. He expressed happiness that its first session will be held in India this year. Vikalp Shukla, Akashvani News, Bishkek.
1: India's real GDP has recorded a growth rate of 7.8% during the first quarter of the current financial year, compared to 6.9% during the same period the previous year. Prime Minister Narendra Modi has said India's economic growth of 7.8% is a reflection of the hard work and collective resolve of 140 crore citizens. Sharing a video in a social media post today, Mr. Modi said India is progressing at a fast pace despite global problems like ongoing wars and instability since the COVID-19 pandemic.
3: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया। देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
1: Union Minister Nirmala Sitharaman has said India has shown that it can adjust to changes in the global economy without allowing its growth to be derailed.

अभी आप सुगम संगीत कार्यक्रम के तहत चंद गज़लों का लुत्फ उठा रहे थे। कलाकार थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम में। कार्यक्रम के साथ आज मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता। दोस्तों, अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और अपने पसंदीदा गीत सुनना चाहते हैं तो हमें मैसेज करें इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9474-234-0000। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9474-234-000। तो श्रोताओं, चलिए देर ना करते हुए लेते हैं आज का पहला SMS, जिसे हमें भेजा है झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप ने। ये सुनना चाहते हैं फिल्म कोयला का ये गीत, और इस गीत को गाया है उदित नारायण और साथियों ने।

आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म नागिन का ये गीत, और इस गाने की फरमाइश की है हमें राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कृति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा ने।

अगले गाने की फरमाइश की है हमें जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून ने। ये सुनना चाहते हैं फिल्म इज्जत का ये गीत, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में दूर की आवाज़। इस फिल्म का ये गीत और इस गाने की फरमाइश की है हमें नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, मलाकापुर महाराष्ट्र से नारायण इलांगे, सोपान तायड़े और आशीष मुहेरकर ने।

अगले गाने की फरमाइश की है हमें सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान ने। ये सुनना चाहते हैं फिल्म दोस्ताना का ये गीत, और इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार ने।

श्रोताओं, इसी के साथ ही आज का हमारा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम अब यहीं पर संपन्न हुआ।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: Juan Arena Sabalenka brushed aside Colombia's Camila Osorio 6-2-6-4 in the first round of the US Open at Arthur Ashe Stadium in New York. Top seed Sabalenka's second round clash is against Russia's Polina Yatsenko, as she looks to become only the third woman after Serena Williams and Chris Evert to win three straight US Opens. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi addresses 26th SEO summit, calls for an end to double standards on terrorism. Indian Railways approves 170 crore rupees for coverage 4.0 on the remaining 712 kilometer stretch of Moradabad Division Northern Railway. In Nepal, flood death toll reaches 987 following widespread devastation. Akashwani's FM Gold commemorates its silver jubilee today. IMD issues red alert for Chhattisgarh. Extremely heavy rainfall expected over parts of Jharkhand, Odisha and Northeast India till tomorrow. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने का आह्वान किया। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के लिए मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हुई। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट। झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, आतंकवादियों की भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की नीति और दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष भारत ने शंघाई सहयोग संगठन सभ्यता संवाद मंच का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इसका पहला सत्र इस वर्ष भारत में आयोजित किया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: आज किर्गिस्तान में हुए शिखर सम्मेलन के बाद शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं ने बिश्केक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। संगठन की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी बिश्केक घोषणा पत्र के साथ साथ सदस्य देशों ने संस्थागत ढांचों को बेहतर बनाने और नए सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के उद्देश्य से व्यापक प्रस्तावों पर भी हस्ताक्षर किए। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयातित ऊर्जा और उर्वरकों पर देश की निर्भरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदर्शित की है, इसके बावजूद उसकी विकास दर पटरी से नहीं उतरती। वित्त मंत्री ने भारत को एक जीवंत और प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था बताया जो बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प

0: परिणाम बताया है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
1: देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा।
0: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 987 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा बलों ने देश के 8 जिलों से और शव बरामद किए हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 583 विदेशियों और कई सुरक्षा कर्मियों समेत करीब 4000 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि लगभग 12000 लोगों को बचा लिया गया है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के शवों की पहचान और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी साझा की है। दूतावास ने बताया कि नेपाल सरकार के अनुसार विदेशी नागरिकों के शवों को सौंपने के लिए कई चरणों की आवश्यकता होती है। इनमें शवों का दस्तावेजीकरण, तस्वीरें और विवरण रिकॉर्ड करना, पोस्टमार्टम, मृत्यु के कारण का सत्यापन, औपचारिक पहचान, उंगलियों के निशान, डीएनए और अन्य फॉरेंसिक नमूनों का संग्रह, मृतक के पासपोर्ट या पहचान पत्र का सत्यापन और दूतावास या वाणिज्य दूतावास के साथ समन्वय शामिल है। दूतावास ने कहा कि यदि रिश्तेदार और परिवार के सदस्य नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध तस्वीरों और विवरणों के माध्यम से शवों की पहचान कर पाते हैं तो दूतावास शवों को सौंपने और स्वदेश वापसी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने में मदद करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नेपाल त्रासदी के दौरान मानवीय सहायता और बचाव कार्यों में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। बल के शपथ ग्रहण समारोह पर अपने लिखित संदेश में श्री शाह ने कहा कि संकट के समय एसएसबी की त्वरित, समन्वित और संवेदनशील कार्रवाई उसके आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व का जीवंत प्रमाण है। समारोह में गृह सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा गृह मंत्रालय और सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। एसएसबी के 18 जवानों को वीरता पदक और 5 जवानों को विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए। गृह सचिव ने एसएसबी की आवासीय परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। कवच स्वदेशी रूप से निर्मित स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के 21 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए 233 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस आधुनिक प्रणाली से पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नल के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। ये स्वदेशी स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को भी सुगम बनाएगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कहा कि सरकार ने 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज के दूसरे वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यान में श्री सेठ ने कहा कि देश का रक्षा उत्पादन लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसने भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू आज शाम अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा उड़ान अहमदाबाद से रवाना होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये उड़ान दिल्ली होते हुए दुनिया भर में अलग अलग स्थानों तक यात्री सेवा उपलब्ध कराएगी।
3: अहमदाबाद में इस फैसिलिटी की शुरुआत के साथ गुजरात का यह प्रमुख शहर भारत के बढ़ते हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में वाराणसी और अमृतसर के बाद तीसरा क्षेत्रीय केंद्र बन जाएगा। यह पहल सरकार की

0: उस व्यापक योजना का हिस्सा है जिसका मकसद छोटे और गैर मेट्रो शहरों से विदेश जाने वाले यात्रियों के हवाई सफर को आसान और सुविधाजनक बनाना है। इजी कनेक्ट सुविधा के तहत यात्री अब अपने आखिरी विदेशी गंतव्य के लिए चेक इन, सामान जमा करने से लेकर कस्टम और इमिग्रेशन जैसी सभी जरूरी औपचारिकताएं सीधे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही पूरी कर सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दिल्ली जैसे प्रमुख हब एयरपोर्ट पर उतरने के बाद यात्रियों को अपना सामान दोबारा लेने, फिर से सुरक्षा जांच कराने या इमिग्रेशन की लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सीधे अपने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के प्रस्थान गेट तक जा सकेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि हर गुजरते साल के साथ एआई समाज में तेजी से शामिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब कम उम्र के विद्यार्थी भी पढ़ाई और रोजमर्रा के कामों में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। श्री जोशी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के 66वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है। ये चैनल वर्ष 2001 में 1 सितंबर को शुरू हुआ था। ये AIR FM गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है। FM गोल्ड पर समाचार, समसामयिक मामलों और मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। एक रिपोर्ट।
2: श्रोताओं, इस धुन को सुनते ही आपके मन में आकाशवाणी की अमर विरासत से जुड़ा एक अद्भुत उत्साह उमड़ने लगा होगा। जी हाँ, ये वही धुन है जिसने पीढ़ियों को ज्ञान और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी से जोड़ा। पिछले कुछ वर्षों में एफएम गोल्ड आकाशवाणी की प्रमुख रेडियो सेवाओं में से एक बनकर उभरा है। इस चैनल पर नियमित समाचार बुलेटिन और सुर्खियाँ प्रसारित होती हैं। साथ ही इस चैनल पर समसामयिक और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। एफएम गोल्ड के कुछ लोकप्रिय कार्यक्रमों में स्पॉटलाइट, मार्केट मंत्रा, स्पोर्ट्स स्कैन और कंट्री वाइड शामिल हैं। वहीं आज सवेरे और परिक्रमा जैसे कार्यक्रम भी श्रोताओं को खासे पसंद आते हैं। ये तो बात हुई एफएम गोल्ड के प्रमुख कार्यक्रमों की, लेकिन इसके अलावा भी इस चैनल ने पिछले 2 दशकों में श्रोताओं को मनमोहक संगीत से मनोरंजित किया है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के वाक्य के साथ आकाशवाणी लगातार जनता के बीच विश्वसनीय और सटीक जानकारी का माध्यम बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
4: मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर जलभराव के कारण आमजन को आवाजाही में परेशानी हो रही है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण संपर्क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध है। उधर अल्मोड़ा में भारी बारिश के चलते सोमेश्वर के बड्यूडा में देर रात एक मकान के भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोग की मृत्यु हो गई। वहीं देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में तेज बहाव में आने से एक वाहन में सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: झारखंड में तेज बारिश जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
5: मौसम केंद्र के अनुसार आज झारखंड के लगभग सभी हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में अगले 24 घंटे के लिए कम से मध्यम स्तर के फ्लैश फ्लड का खतरा जताया है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अचानक तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और फ्लैश फ्लड की स्थिति बन सकती है, जिसे देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं रांची, खूंटी, चतरा और सरायकेला खरसावा में येलो अलर्ट जारी करते हुए कहीं कहीं भारी बारिश, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: घरेलू शेयर बाजारों में आज दोपहर कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 43 अंक की गिरावट से 76,915, जबकि निफ्टी 51 अंक की गिरावट के साथ 24,030 पर कारोबार कर रहा था।

0: अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में विश्व वरीयता प्राप्त एरिना सबालेंका ने न्यूयॉर्क में कोलंबिया की कैमिला ओसोरियो को पराजित कर दिया है। सबालेंका का अगला मुकाबला रूस की पोलिना यात्सेन्को से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने का आह्वान किया। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हुई। आकाशवाणी FM गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है। और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट। झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी जानकारी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तट पर वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे होने की संभावना है, जिस कारण समुद्र काफी अशांत रहेगा। अतः मछुआरों को 2 सितंबर तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:31 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है आप सबके भरपूर मनोरंजन के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक।
1: नॉनस्टॉप म्यूजिक।

0: फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हमने जितने भी गीत शामिल किए उनके फिल्मों के नाम थे जिद्दी, ये दिला शिकाना, मेजर साहब, इंटरनेशनल खिलाड़ी, दिल मांगे मोर, क्रोध, दिल क्या करे, अकेले हम, अकेले तुम, चमेली और जोश।
1: विविध भारती FM 3 विजयपुरम
2: 100.9 आपका हम सफर।

0: गाती रहूँ मैं। दोस्तों, आज बातें रिश्तों की। रिश्ते वो नहीं होते जो दुनिया को दिखाए जाए, रिश्ते वो होते हैं जिन्हें दिल से निभाया जाए। खूबसूरत रिश्ते किस्मत से नहीं, समझदारी और भरोसे से बनते हैं। रिश्ते में प्यार हो तो ज़िंदगी हसीन लगती है, अपनों की मौजूदगी हर खुशी से बड़ी लगती है।
1: तुमसा कोई दूसरा इस समीप हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी।

दोस्तों, रिश्तों की खूबसूरती साथ रहने में नहीं, एक दूसरे को समझने में है। रिश्ते शब्दों से नहीं, एहसासों से मजबूत होते हैं। रिश्ते जिंदगी की खूबसूरत पहचान होते हैं। सच्चे रिश्ते ही दिल का सुकून होते हैं।

दोस्तों, रिश्ते कांच की तरह होते हैं, संभाल कर रखो तो उम्र भर साथ देते हैं। रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए प्यार चाहिए, उसे हमेशा निभाने के लिए विश्वास चाहिए।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे हैं। आज की अपनी दूसरी सभा में आप सभी श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिलनाम इंगी रोक रहामांग इंगी रेताका लमक तेलंगी मीडियम वेव 438.6 मीटर हेक 684 किलोहर्ट्स रामांग एलंगी आकाशवाणी श्री विजयपुरम इंगी निकोबारी प्रोग्राम तहांग।

0: Ngajin tay hang tin ke ti ke nya Kyle Matthew. Ho yang ngatil nga ang sin tangamu hek inu re changrong i takasata. I the fan kan ro tela harap ngayen.
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 4:30 हुए हैं। सुगम संगीत इस कार्यक्रम के तहत लीजिए सुनिए पंकज उदास, आशा भोसले और अशोक खोसला को। सबसे पहले पंकज उदास की आवाज़ में कैसर उल जाफरी का कलाम।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं, अभी आप पंकज उदास और अशोक खोसला को सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 4:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ देर बाद यानी 4:45 पर

सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम में महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा महलीर उलगम। 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम में कुछ लोकगीत सुनिएगा। संध्या 6 बजे सुनिए किसान वाणी कार्यक्रम। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम में बहार आप सुनेंगे संध्या 6:30 पर। मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं आप सुनेंगे संध्या 7:15 पर। कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का आनंद लीजिए 7:20 पर। 7:30 पर युववाणी कार्यक्रम के तहत सुनिए कार्यक्रम देश की शान। चित्रपट संगीत फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम होगा रात्रि 8 बजे। 8:30 पर रोजगार समाचार, तत्पश्चात सुनिए गौरवगान। और रात 10 बजे व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनिए संदेशे आते हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर मनी टॉक और 9:45 पर मंथन कार्यक्रम होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तथा रात 10 बजे FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। और अब कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें, हमारी पहली सभा आरंभ होगी कल सुबह 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। एग्री टिप्स में जानेंगे समुद्री शैवाल की खेती के बारे में सुबह 5:55 पर। 6:10 पर जलियानों के यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत करवाएंगे। इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा उम्मीद शीर्षक पर 6:15 पर। 6:30 पर रामचरित मानस गान आप सुनेंगे। वतन के गीत का समय रहेगा 6:40। 6:50 पर मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा। सवेरे 7 बजे सुनिए जन सूचनाएं, आनंद लीजिएगा देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी का 7:15 पर, जबकि इसी समय FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में 7:30 पर आप सुनेंगे काव्य पाठ, तत्पश्चात कुछ फिल्मी गीतों का आनंद लीजिए। 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप मन्ना डे और सीमा शर्मा को सुनेंगे। तराने सुहाने कार्यक्रम का लुत्फ लीजिए सवेरे 9 बजे। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप हिंदुस्तानी शैली में उस्ताद अली अहमद हुसैन का शहनाई वादन सुनेंगे। कार्यक्रम गीत गाता चल का आनंद लीजिए सवेरे 10 बजे। दिन के 11 बजे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT प्रसारित की जाएगी। चित्रलोक फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम होगा दिन के 11:30 पर। दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम में महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा वनिता वाणी और विश्व नारियल दिवस पर चर्चा। मलयालम कार्यक्रम में 12:30 पर विश्व नारियल दिवस पर चर्चा और कुछ फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे। 1:10 पर महफिल कव्वाली कार्यक्रम के तहत कव्वाल होंगे शंकर शंभू, हबीब पेंटर कव्वाल और कौशर आज़ाद बदायूनी। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम होगा 1:30 पर। पर मौसम की जानकारी के साथ हमारी पहली सभा की समाप्ति होगी, लेकिन FM 100.9 MHz पर हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे जिसके तहत 2:30 पर लाइव फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स और 3:30 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो।

अभी आप हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से। आशा भोसले और अभिजीत की आवाजें हैं, जिसकी गीत रचना की है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया जतिन ललित ने।

नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में तैयार, आइए अब सुनते हैं समीर की गीत रचना, जिसे गाया है आशा भोसले और कुमार सानू ने। फिल्म का नाम है दिल का क्या कसूर।

और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए हम साथ साथ है फिल्म का ये गीत। आर किरण के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है राम लक्ष्मण ने। गायक कलाकार है कविता कृष्णमूर्ति, हरिहरन, कुमार सानू और अलका याग्निक।

0: इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए तमिल कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम वानोली निलयम वळंगुम तमिळ अमुदम वणक्कम नेयर्गले।

কতকাল ভাবি শুধু একা বসিয়া রে দয়াল, এভাবে আর চলবে কতকাল। তরি

0: अभी आपने सुना बांग्ला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए किसान भाइयों को संबोधित हमारा कार्यक्रम किसान वाणी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहनों और भाइयों को हमारा नमस्कार और साथियों आप सभी का आज के हमारे इस अंक में तहे दिल से स्वागत अभिनंदन। साथियों, मुश्किलें जीवन का अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत का अवसर।

होती हैं। जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो परिस्थितियों से नहीं बल्कि संकल्प से पहचाना जाता है। और हमारे जीवन की तमाम मुश्किलें जीवन का अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत का अवसर होती हैं। आज के इन्हीं विचारों के साथ अब हम कार्यक्रम का आगाज करते हैं और पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। और साथियों, आज आपको बताना है कि पशु आहार में अजोला के प्रयोग से किस घटक की प्राप्ति ज्यादा होती है। तीन विकल्प भी हम आपको बता रही हैं, प्रोटीन, वसा या फिर विटामिन। भाइयों, प्रश्न हम एक बार फिर दोहरा देते हैं। साथियों, हमारा आज का प्रश्न है कि पशु आहार में अजोला के प्रयोग से किस घटक की प्राप्ति ज्यादा होती है, प्रोटीन, वसा या फिर विटामिन। आप इस प्रश्न का उत्तर सोचते रहें, कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें। कार्यक्रम के अंतर्गत हम इस प्रश्न का सही जवाब आपको अवश्य ही बताएंगे। किसान साथियों, भारत में हर वर्ष 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह यानी नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को संतुलित आहार, पोषण और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना है। और इस सप्ताह के माध्यम से लोगों को ये समझाने का प्रयास किया जाता है कि अच्छा स्वास्थ्य केवल पेट भरने से नहीं बल्कि एक पौष्टिक और संतुलित भोजन लेने से मिलता है। खासकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों के पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हमें ये भी बताता है कि संतुलित आहार के प्रति समाज में जागरूकता होनी कितनी जरूरी है, कुपोषण से बचाव के तरीके बताए जाते हैं, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर आप किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं इस बारे में भी बताया जाता है। जहाँ तक पोषण की बात है, वहाँ हमें इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि पोषण सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं पशुओं में भी पोषण का बेहतर ध्यान जो है वो हमें देना चाहिए, तभी उनसे मिलने वाले उत्पाद जो होंगे वो पौष्टिक होंगे और हमें भी कुपोषित होने से बचा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम खेतों की बात करें, हमें मृदा के स्वास्थ्य पर भी पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर हमारी मिट्टी स्वस्थ होगी तो तभी हमारे खेत खलिहान जो है वो उनसे मिलने वाली उपज पौष्टिकता प्रदान करने वाली मिलेगी। तो इस तरह से राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के तहत हमें केवल मनुष्यों के पोषण पे ही ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपने खेत खलियानों, हमें अपनी मृदा के स्वास्थ्य में और पशु पक्षियों के पोषण का भी ध्यान रखना चाहिए। साथियों, ये तो थी कुछ बातें राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के संदर्भ में, लेकिन अब हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के परियोजना अधिकारी श्री सुरेंद्र नाथ सिंह जी से। और इनके साथ आज बातचीत का विषय रहेगा ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास में स्वयं सहायता समूह। तो चलिए भाइयों, करते हैं इनसे मुलाकात और लेते हैं इस विषय में ये जानकारी।

0: सुरेंद्र जी, कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ है क्या?
1: भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ये एक जो है सन 1992 जून में इसकी स्थापना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई
0: जी।
1: ये उस समय जो कि कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय के तहत में, उस समय सहकारिता मंत्रालय अलग नहीं हुआ करता था, तो कृषि मंत्रालय के तहत में हमारा एक विभाग होता था, उसके तहत में 1992 में जून में इसकी स्थापना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई। अमूमन इसका मुख्य उद्देश्य जो है सहकारिता क्षेत्र के विकास, प्रचार प्रसार, स्वयं सहायता समूह के गठन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो मेंबर्स है उन सारे सदस्यों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये सारा काम को लेके यहाँ पर स्थापित किया गया था।
0: काफ़ी समय से ये जो संघ है काम कर रहा है, तो किस क्षेत्र में ज़्यादा काम आप देख पा रहे हैं कि ये क्षेत्र कर रहा है?
1: देखिए, हमारी जो परियोजना है ये अमूमन जो पैक्स है, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज
0: जी,
1: जो ग्रामीण स्तर पर कार्यरत है, इसमें आप यहाँ से डिगलीपुर हो, रंगत हो, मायाबंदर हो या हमारा साउथ अंडमान का क्षेत्र हो, आप देखेंगे कि 3-4 गांवों को मिलाकर एक एक जो है सहकारी समिति का गठन किया गया है। इसमें 200 से 250, 300, 400 मेंबर तक भी होते हैं। और इसके साथ साथ जो है हमारी जो दीपों की परियोजना है जो है स्वयं सहायता समूह के ऊपर भी काम कर रही है, और इन जो स्वयं सहायता समूह है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को सदस्य है इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, किस तरह से सहकारी समिति में इनकी भागीदारी होगी वो सुनिश्चित करना, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को स्वयं सहायता समूह गठित करना, उसके बाद इनको प्रशिक्षित करना और

0: किस तरह से बैंकों के माध्यम से ऋण प्रोवाइड कराना, और इसके बाद जो है ट्रेडिंग के माध्यम से इनकी जो स्वरोजगार स्थापित करने तक हम इनका काम करते हैं।
1: अच्छा, यानी ग्रामीण महिलाओं के विकास में जो है स्वयं सहायता समूह की बहुत अधिक भूमिका होती है, और ये जो है सहकारी संघ जो है इसकी ओर मददगार साबित हुआ है।
0: जी,
1: तो आप क्या पाते हैं ग्रामीण महिलाएं जो है आज स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपना जो है कुछ स्वरोजगार कर रही हैं?
0: देखिए शुरुआती के दिनों में जब हम लोग हमारी स्थापना यहाँ पर हुई थी, तो जब हम ग्राम स्तर पर अपने स्टाफ के साथ या जो भी पंचायती राज संस्थाओं के साथ में हम संपर्क करते थे, जाते थे, उस समय बड़ी दिक्कत होती थी कि लोगों के अंदर जागरूकता की बड़ी कमी थी। महिलाएं चार दीवारी से बाहर नहीं आती थी, और NCY जो है पैनर एजेंसी है स्वयं सहायता समूह को यहाँ पर स्थापित करने में। तो मुझे याद है कि 1992 में जब यहाँ पर स्थापित हमारा परियोजना हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने पहली जो है स्वयं सहायता समूह मीठागाड़ी में स्थापित की थी,
1: जी
0: और उस समय जो है कुछ महिलाएं बाहर आई थी, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा

0: कमी थी, महिलाएं चार दीवारी से बाहर नहीं आती थी। और एनसीआई जो है पैनर एजेंसी है स्वयं सहायता समूह को यहाँ पर स्थापित करने में, तो मुझे याद है कि 1992 में जब यहाँ पर स्थापित हमारा परियोजना हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने पहली जो है स्वयं सहायता समूह मीठागाड़ी में स्थापित की थी
1: जी।
0: और उस समय जो है कुछ महिलाएं बाहर आई थी, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे हम लोगों ने अपना कार्य को विस्तार किया और यहाँ से लेके डिगलीपुर हो, माया मंदिर हो या रंगत का क्षेत्र हो, और हमारे स्टाफ जाते थे और अन्य विभाग के जरिए, ऐसा नहीं कि हम खाली स्वयं सहायता समूह को लेके ही काम कर रहे हैं, जो यहाँ का आरसीएस डिपार्टमेंट है इसके ऑफिशियल के साथ में हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे कि इनको क्या फ़ायदा होगा
1: जी।
0: जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मेंबर हैं उनको सोसाइटी से क्या क्या बेनिफिट होगी, और बैंक से ऋण मुहैया कराने के बाद में ये किस तरह से अपना स्वयं का कारोबार कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जागरूकता काफ़ी आई और आज के दिनों में आप देखेंगे कि ये हमारा विभाग ही नहीं बल्कि अन्य कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कैरी हो, KVK हो, बहुत सारे डिपार्टमेंट के तहत में जो है इस तरह के जो स्वयं सहायता समूह भी संचालित किए जा रहे हैं और इसका अच्छा परिणाम देखने को मिला है।
1: तो ये जो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं होती है, जो इनका छोटा सा ग्रुप बनता है 10 लोगों का या 20 लोगों का, तो आपके विभाग से किस किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है?
0: देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि हमारा काम सिर्फ इनको स्वयं सहायता समूह गठित करके देना ही नहीं है बल्कि इनको एक मार्ग प्रशस्त करना है। और स्वयं सहायता गठन के बाद हम ये करते हैं कि उनको इनका रुझान देखते हैं कि किस तरफ है
1: जी।
0: यदि एक हैंडीक्राफ्ट का ट्रेनिंग करना चाहती हैं या कोई टेलरिंग का ट्रेनिंग करना चाहती हैं या फिर कोई ब्यूटिशियन कोर्स करना चाहती है तो हमारा विभाग इस तरह का ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करता है। और वो चाहे 3 महीने का कोर्स हो, 6 महीने का कोर्स हो या 2 महीने का कोर्स हो, इसको हम इस प्रकार के ट्रेनिंग को हम लोग जगह जगह प्रशिक्षित करते हैं और इसके बाद इनका जो है खुद की यूनिट खोलने के लिए हम बैंकों के माध्यम से ऋण प्रोवाइड कराते हैं। और आप जानते हैं कि आज सबसे बड़ा दिक्कत कोई भी यूनिट खोलने के लिए पैसे की होती है
1: जी जी।
0: तो कोई भी महिला ऐसे सक्षम नहीं होती क्योंकि ग्रामीण परिवेश से आती है, ग्रामीण क्षेत्र से आती है, तो इनके पास उतना पैसा नहीं होता कि कोई भी बाजार में मार्केट में बैठ कर कोई अपनी यूनिट खोले। तो हम बैंकों से के माध्यम से इनको आसान शर्तों पर ऋण मुहैया करवाते हैं और ये अपनी यूनिट खोल के आज आप देखोगे कि किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी एक महिला प्रशिक्षित है, चाहे वो ट्रेलरिंग का काम कर रही है तो खुद का अपना काम करके वो अपनी जीविका बड़े आसानी से चला रही है। तो ये एक अच्छा परिणाम देखने को मिला है। और यही नहीं, आप जानते हैं कि भारत सरकार जो है सरकारी स्कूलों में जो है मिड डे मील का काम करवा रही है
1: जी।
0: तो ये सारे स्वयं सहायता समूह जो है इसमें बड़ी अच्छी से अपनी जो है भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के जो स्कूल हैं उसमें आप देखोगे कि इनके दोपहर का जो भोजन है बच्चों के लिए वो बड़े हाइजीनिक तरीके से ये प्रोवाइड करवा रही हैं, और चाहे वो कोई कैंटीन खोलना हो, चाहे कोई टेलरिंग की यूनिट खोलनी हो, चाहे ब्यूटी पार्लर खोलना हो, इस सब के लिए हम लोगों ने बैंकों के माध्यम से ऋण मुहैया करवाया हुआ है और ये अपनी आर्थिक और सामाजिक विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं।
1: सुरेंद्र जी, ये जो ट्रेनिंग की बात आपने की, ये ट्रेनिंग क्या आपके विभाग से फ्री में दिया जाता है?
0: जी हाँ जी हाँ, इसमें कोई भी चार्ज नहीं किया जाता है। हमारा विभाग पहले हम इनका रुझान देखते हैं कि ये किस प्रकार की ट्रेनिंग ये चाहते हैं, उसके बाद हम अपने मुख्यालय दिल्ली को इनका प्रस्ताव भेजते हैं और उसी प्रकार से तुरंत वो उस तरह के जो प्रोग्राम है जिस प्रकार की ये ट्रेनिंग चाहती हैं हम उनको उनके स्थान पर ही किसी हॉल में या पंचायत में हम इस तरह के प्रोग्राम करवाते हैं। और ये बड़ा अच्छा से ये इसमें रुचि लेकर ये सारे ट्रेनिंग करती हैं और उसके बाद फिर जो है इनका जो जीविका चलाने का काम शुरू होता है।
1: जब ये अपना मतलब कोई अगर जैसे कुछ करना चाहती है तब बैंकों से इनको ऋण लेकर
0: जी
1: करना
0: हाँ जी
1: पड़ता
0: हाँ। क्योंकि देखिए बैंक से जब हम लोन देते हैं तो बैंक भी कुछ चार्जेस करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो इसलिए हम ये देखते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि इनकी रुझान, इनका जो है ध्यान किस तरफ है, इनकी रुचि किस तरफ है, और उसी के आधार पे हम ये तय करते हैं कि नहीं ये जो टेलरिंग का काम करना चाहते हैं या हैंडीक्राफ्ट का काम करना चाहते हैं या फिर यहाँ पर अब देखते हैं कि बहुत आयत जो है नारियल का खोल उपलब्ध है, उसका जो रेशा होता है इस पर आधारित जो है हैंडीक्राफ्ट आइटम ये तैयार करना चाहते हैं, तो इस प्रकार के ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करके और इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिले
1: जी। और जब ये जैसे कि कुछ बना लेती हैं, जैसे कुछ आइटम को बना करके, फिर ये बेचने के लिए इनको कोई परेशानी तो नहीं होती?
0: जी जी, ये एक बड़ा मुद्दा बीच में हो गया था क्योंकि अब सारे SHGs को हर डिपार्टमेंट ही ट्रेनिंग दे रहा है
1: जी
0: और हम लोग भी इनको काफ़ी ट्रेनिंग दे चुके हैं, तो फिर ये तैयार माल को बेचने के लिए एक बड़ा

0: मुसीबत सामने आ गया था। लेकिन चूंकि अब जो है प्रशासन भी काफ़ी चौकन्ना है, इनको जो है समय समय पर जो है मार्केट मुहैया करवा रहा है, चाहे वो टूरिज्म फेस्टिवल के नाम पे हो या फिर मेरीना पार्क में
1: मेरीना
0: मेले के
1: पार्क
0: नाम पे हो,
1: जी
0: तो इनको समय समय पर मुझे लगता है कि अब उनको दिक्कत नहीं आ रही है और अपनी जो भी तैयार माल है ये बिक्री करने के लिए सक्षम है और ये बिक्री करके अपनी आर्थिक उन्नति कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि ग्रामीण महिलाएं आज आगे आ रही हैं और अपना जो जीवन है उसको सुधार पा रही हैं। तो आज से पहले महिलाओं के जीवन और आज के संदर्भ में क्या बदलाव देखते
0: काफ़ी
1: हैं आप?
0: काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। जैसा मैंने प्रारंभ में ही बोला कि हम लोग जब ग्रामीण स्तरों पर जाते थे तो महिलाओं की रुचि बहुत कम होती थी और इवन जो है जो पुरुष होते थे वो अपनी घर की महिलाओं को बाहर निकलने के लिए उतना ज़्यादा प्रेरित नहीं करते थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो जागरूकता आई और पुरुषों ने ये भी देखा कि नहीं, उनकी जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो बाहर निकल रही हैं और वो कुछ कमाने का जो है जरिया उसको इख्तियार कर रही हैं, और उनको लगा कि नहीं ये तो अच्छा चीज़ है, क्योंकि जब 10 महिलाएं एक जगह बैठती हैं, एक जगह सामाजिक चर्चा होती है, उनको जो है बैंक के माध्यम से ऋण मुहैया करवाता है। और मैं ये बता दूं कि बैंक के माध्यम से कोई भी इनको लोन देने के टाइम में कोई मोर्टगेज नहीं लिया जाता है, बस इनका ये एक विश्वास है, इनकी जो है जो इनका दस्तावेज है उसके आधार पे, क्योंकि मीटिंग ये प्रॉपरली करती हैं, बैठती हैं, चर्चा करती हैं कि किस किस मेंबर को किस तरह का लोन चाहिए और वो लोन की अदायगी भी वापसी भी टाइम से होती है,
1: जी
0: तो बड़े डिसिप्लिन तरीके से इनका काम चलता है। तो ये बहुत सारा बदलाव आया है समाज में। आज देखिए कि कहीं भी आप देखिए, इवन कोई भी प्रोग्राम होता है, किसी डिपार्टमेंट का प्रोग्राम होता है, पहले जो महिलाएं चार दीवारी से बाहर नहीं निकलती थी, आज वो बड़े पैमाने पर बाहर निकल कर वो जाती हैं।
1: बहुत सारे लोगों को देखने को मिलता है कि कोई अचार बना रही है, कोई
0: जी जी
1: अपना नारियल के से सामान बना
0: जी जी
1: करके बेच रही है, तो काफ़ी जागरूकता आई
0: काफ़ी
1: है।
0: काफ़ी जागरूकता आई है, उनको लगा है, उनको लगा कि नहीं ये काम करने से।
1: जी
0: बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं कि जो महिलाएं कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज वो अपना खुद का प्रोडक्ट बनाकर, इवन उनके सारे जो प्रोडक्ट हैं हम लोगों ने दिल्ली जो हार्ट है हमारा एनसीए का हार्ट वहाँ तक भी भेजा है और
1: अच्छा।
0: उनको अच्छी आमदनी भी हुई है।
1: सुरेंद्र जी, आगे भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ जो है और क्या प्रोग्राम महिलाओं के लिए बनाने की सोच रहा है?
0: देखिए, हम चाहेंगे कि इस तरह के खाली महिलाएं ही नहीं, जो युवा भी हैं वो भी
1: जी
0: आगे आएँ, वो भी कॉपरेटिव से जुड़े, और ये जो महिलाएं जो अपना काम कर रही हैं उसको बड़े पैमाने पे करें। यहाँ पर हमारी बहुत सारे SHGs हैं जो कि अभी वो फिशरीज़ का जो एम्पोरियम है
1: जी
0: उसमें भी अपना स्टॉल उन्होंने लगाया हुआ था, और अब भी आगे भी उनका जो है अभी टेंडर हुआ है, तो मुझे लगता है कि उनको और भी मार्केटिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और जहाँ पर ये इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का भी एम्पोरियम अपने प्रोडक्ट को वहाँ भी वो सेल करती है, तो मैं अन्य महिलाओं को भी कहूँगा कि वो आगे आए, जो महिलाएं जो है स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारा स्कोप दिखता है। आप घर पर बैठकर समय व्यतीत ना करके इस तरह की संस्था से जुड़े, और चाहे वो कॉपरेटिव हो चाहे वो स्वयं सहायता समूह हो, ये बहुत ही अच्छा विकल्प है कि आप घर बैठे अपने समय को देकर और अपना आर्थिक और सामाजिक विकास कर सकती हैं।
1: बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि युवक भी इससे जुड़ सकते हैं,
0: जी जी
1: तो को काफ़ी जो पढ़ लिख करके युवक बैठे हैं ना, वो सोचते हैं कि जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो वो बेकार नहीं बैठे बल्कि इससे जुड़ सकते
0: जी जी
1: हैं।
0: जी जी
1: सुरेंद्र जी, एक बार अपना पता बता दें ताकि लोग आपसे वहाँ मुखातिब हो
0: देखिए,
1: सके।
0: हमारा कार्यालय जो है अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन के कॉम्प्लेक्स में है जो कि टेलराबाद स्थित है, और कोई भी अगर आकर अपनी जो है जिज्ञासा को लेना चाहता है या कुछ प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है तो हमसे संपर्क करें, और हम लोग जो है हमेशा जो कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए या युवाओं या युवतियों को आगे बढ़ाने के लिए और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जो है हम हमेशा तत्पर हैं, और हमसे जो भी मदद लोग लेना चाहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं।
1: बहुत ही अच्छी बात आपने कही। चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: दे हम तो दीपवासियों को यही कहेंगे कि हम लोगों से एक अपेक्षा करते हैं और दीपों को बढ़ता हुआ देखना भी चाहते हैं,
1: जी
0: और पिछले कई सालों से दीपों में बड़ा परिवर्तन भी आया है, लोगों की जिज्ञासा, लोगों का आगे बढ़ना, लोगों की सोच में काफ़ी बदलाव आया है, लोग चाहते हैं कि आगे बढ़े और अपना खुद का आय करें। खासकर महिलाओं में ये चीज़ काफ़ी देखने को मिला है कि जो ग्रामीण महिलाएं थी वो पहले बहुत पिछड़ा थी, लेकिन आज जो है वो आगे बढ़ चढ़ कर इस क्षेत्र में अपने आप को स्थापित कर रही है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में हमारा दीप सुंदर हो, उज्जवल हो और विकास के पथ पर निरंतर वो आगे बढ़ता रहे।
1: बिल्कुल, हम भी यही आशा करते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ आपके साथ है, तो कभी भी आप जा सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो सुरेंद्र नाथ जी, आज आप हम

ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास में स्वयं सहायता समूह। किसान साथियों, अभी आपने भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के परियोजना अधिकारी श्री सुरेंद्र नाथ सिंह जी से की गई ये बातचीत सुनी। और भाइयों, अब आपका मनोरंजन हो जाए तो चलिए साथियों, मनोरंजन के बहाने आनंद लेते हैं इस प्यारे से गीत का।

गीत आपने सुना, हम उम्मीद करते हैं इसे आपने जरूर पसंद किया होगा। साथियों, शरीर के अच्छे वृद्धि और विकास के लिए जिस तरह हमारा स्वस्थ रहना बेहद जरूरी होता है, उसी तरह से अच्छी उपज, पौष्टिक उपज को प्राप्त करने के लिए मिट्टी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी होता है। अगर हमारी मृदा का स्वास्थ्य अच्छा होगा, तभी उससे मिलने वाली उपज अच्छी और किसानों की आमदनी को बढ़ा सकेगी। साथियों, हम मृदा के स्वास्थ्य के लिए कई तरह के उपाय करते हैं, उन्हीं में से एक है केचुआ कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट। जी हाँ साथियों, केचुआ कंपोस्ट यानी वर्मी कंपोस्ट एक प्राकृतिक जैविक खाद है, जिसे केचुओं की सहायता से गोबर, फसल अवशेष और अन्य जैविक कचरे को सड़ाकर तैयार किया जाता है। ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। केचुआ कंपोस्ट से मिट्टी में जैविक पदार्थ और पोषक तत्व बढ़ते हैं। पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तथा सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। मिट्टी की जल धारण क्षमता और संरचना इससे बेहतर होती है। रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए भी केचुआ कंपोस्ट मदद करता है। सब्जियों, फलों, फूलों, अनाज और बागवानी फसलों में भी ये बेहद उपयोगी है। पौधों की जड़ों के विकास और वृद्धि में केचुआ कंपोस्ट मदद करता है। इसे बनाने के लिए छायादार और पानी की निकासी वाली जगह पर वर्मी बेड तैयार किया जाता है। सूखे पत्ते, फसल अवशेष, भूसा आदि की एक परत लगाई जाती है और उसके ऊपर अच्छी तरह से सड़ा हुआ गोबर और जैविक कचरा जो है वो डाला जाता है। इसमें उपयुक्त केचुआ डालें, जैसे रेड विग्लर, और सामग्री में नमी बनाए रखें, लेकिन पानी जमा न होने दें। लगभग 45 से 60 दिनों में अच्छी गुणवत्ता की वर्मी कंपोस्ट इस तरह से तैयार हो जाती है। लेकिन इसको बनाते समय कुछ बातों का ध्यान जो है वो

0: रखा जाना चाहिए, जैसे बेड को तेज धूप और बारिश से बचाएं, अत्यधिक पानी न डालें, प्लास्टिक, कांच, धातु, रासायनिक कचरा बिल्कुल भी न डालें। कंपोस्ट तैयार होने पर उसका रंग गहरा भूरा, काला और बनावट भुरभुरी होती है तथा उसमें मिट्टी जैसी गंध आती है। और इस तरह से तैयार की गई केचुआ कंपोस्ट जो है, ये आप अपने खेतों में डाल सकते हैं और इससे किसानों को बहुत फायदे होते हैं। जैसे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, रासायनिक खाद का खर्चा कम हो जाता है, फसल और पौधों की वृद्धि बेहतर होती है, मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता बढ़ती है और फसल अवशेषों का उपयोग भी हो जाता है। किसानों को अतिरिक्त और किसान भाई इससे अतिरिक्त आय भी कमा सकते हैं। तो साथियों, केचुआ कंपोस्ट खेतों के लिए जहां उपयोगी है, वहीं किसानों के लिए एक आमदनी का स्रोत भी बन सकती है। साथियों, ये तो थी कुछ बातें केचुआ कंपोस्ट के संदर्भ में, और कार्यक्रम में फिर वक्त हो चला है आपसे आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर बताने का। भाइयों, कार्यक्रम के आरंभ में आज हमने आपसे पूछा था, पशु आहार में अजोला के प्रयोग से किस घटक की प्राप्ति ज्यादा होती है, प्रोटीन, वसा या फिर विटामिन? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, पशु आहार में अजोला के प्रयोग से प्रोटीन की प्राप्ति होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने इस उत्तर के माध्यम से ये जानकारी हासिल कर ली होगी। और साथियों, इसी के साथ आज के लिए किसानवाणी का ये समय यहीं पर होता है संपन्न। अब मुलाकात होगी अगले अंक में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
4: अभी आप किसान भाइयों को संबोधित हमारा कार्यक्रम किसान वाणी सुन रहे थे।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:30 हुए हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम शामे बहार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खिलाड़ी फिल्म के एक गीत के साथ। आवाजें हैं अभिजीत और अलका याग्निक की, बोल समीर के तथा धुन बनाई है जतिन ललित ने।

अब पेश है कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में दलाल फिल्म का गाना। अनजान के लिखे इस गीत को संगीत से नवाजा है बप्पी लहरी ने।

अनु मलिक के संगीत निर्देशन में तैयार समीर के लिखे इस गीत को हमने फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से लिया है। आवाज़ें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की।

नरिम श्रवण के संगीत निर्देशन में तैयार समीर के लिखे इस गीत को स्वर दिया है अलका याग्निक और विनोद राठौड़ ने। फिल्म का नाम है दीवाना।

और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए विनोद राठौड़ और अलका याग्निक की आवाजों में समीर का लिखा एवं अनु मलिक का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म बाजीगर का ये गीत।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है।

श्रोताओं आपको पुनः बता दें, संध्या 7:15 पर आप सुनेंगे मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का आनंद लीजिए 7:20 पर।

7:30 पर युववाणी कार्यक्रम के तहत सुनिए कार्यक्रम देश की शान। चित्रपट संगीत, फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम होगा रात्रि 8 बजे।

और अब कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में कुछ बता दें आपको। इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा उम्मीद शीर्षक पर, जिसे आप सुनेंगे कल सुबह 6:15 पर। छह बजकर पचास मिनट पर मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा।

आनंद लीजिएगा देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी का सुबह 7:15 पर, जबकि इसी समय FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

तराने सुहाने कार्यक्रम का लुत्फ लीजिए सवेरे 9 बजे। नौ बजकर 30 मिनट पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप हिंदुस्तानी शैली में उस्ताद अली अहमद हुसैन का शहनाई वादन सुनेंगे। कार्यक्रम गीत गाता चल का आनंद लीजिए सवेरे 10 बजे। चित्रलोक फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम होगा दिन के 11:30 पर। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम होगा 1:30 पर।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई करने और दोहरे मापदंड से बचने की अपील की। सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को भारत ने ठुकराया। डॉ बीआर अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में राष्ट्र निर्माण और जिम्मेदार नागरिकता पर जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। और जेएनआरएम में मुंशी प्रेमचंद जयंती पर भारतीय साहित्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद किया गया।

सांध्य समाचारों के साथ मैं के जगदीश्वरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों पर भी चिंता

व्यक्त की। उन्होंने कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है और सभी विवादों का समाधान संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को आपस में जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। श्री मोदी ने सम्मेलन में कहा कि पिछले वर्ष भारत ने शंघाई सहयोग संगठन सभ्यता संवाद मंच का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इस मंच का पहला सत्र इस वर्ष भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने विश्व बैंक द्वारा सिंधु जल संधि पर गठित मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को पूरी तरह खारिज कर दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए उसके फैसले को कानूनी रूप से अमान्य बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने मध्यस्थता पैनल को

हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। श्री मोदी ने सम्मेलन में कहा कि पिछले वर्ष भारत ने शंघाई सहयोग संगठन सभ्यता संवाद मंच का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इस मंच का पहला सत्र इस वर्ष भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने विश्व बैंक द्वारा सिंधु जल संधि पर गठित मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को पूरी तरह खारिज कर दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए उसके फैसले को कानूनी रूप से अमान्य बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने मध्यस्थता पैनल को कभी मान्यता नहीं दी, न ही उसकी कार्यवाही में भाग लिया और न ही उसके फैसले को मानने के लिए बाध्य है। भारत ने यह भी दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। यह बयान हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि संधि को स्थगित करने के भारत के कारण इसके निलंबन या समाप्ति को उचित नहीं ठहराते। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन शनाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। दोनों देशों के प्रतिनिधि पर्यावरण संरक्षण और जलवायु नीति से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे तथा आपसी सहयोग को और मजबूत करने, अनुभव साझा करने और व्यावहारिक सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर विचार करेंगे। यह मंच नीति निर्माताओं, निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों, विचारकों और अन्य प्रमुख हितधारकों के बीच पर्यावरण और जलवायु सहयोग को लेकर विचारों के आदान प्रदान का अवसर प्रदान करेगा। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम द्वारा कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक पेट टॉक बियॉन्ड द बॉन्ड फोन इन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम का विषय है सफल पशुपालन के माध्यम से रोजगार सृजन। कार्यक्रम में पोर्टमोट और एलिफेंट पॉइंट स्थित पशु चिकित्सालय के प्रभारी वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ संजली सोरेन विशेषज्ञ के रूप में स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी और दर्शकों के सवालों का जवाब देंगी। दर्शक 2447 45 या 2456 62 नंबर पर फोन कर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, जागरूकता सत्र और मुंशी प्रेमचंद जयंती। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म एक्स, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में अंडमान निकोबार कमान के मुख्यालय की सेना इकाई के लेफ्टिनेंट कर्नल नितेन मेहता और लेफ्टिनेंट कर्नल राहुल राज ने राष्ट्र निर्माण और जिम्मेदार नागरिकता विषय पर जागरूकता सत्र आयोजित किया। इस सत्र में इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के प्रथम वर्ष के लगभग 250 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में अनुशासन, साहस, दृढ़ता, प्रेरणा, जिम्मेदारी और देश के प्रति समर्पण की भावना विकसित करना था। अपने संबोधन में अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्र निर्माण किसी विशेष पेशे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने आसपास की चुनौतियों को पहचानने और नवाचार, रचनात्मकता तथा जिम्मेदार कार्यों के माध्यम से समाज और देश के विकास में योगदान देने के महत्व पर प्रकाश डाला। सत्र के दौरान मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों पर भी चर्चा की गई। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के हिंदी विभाग ने हाल ही में महाविद्यालय में मुंशी प्रेमचंद जयंती मनाई। कार्यक्रम में मुंशी प्रेमचंद की साहित्यिक कृतियों और उनमें दर्शाई गई सामाजिक वास्तविकताओं की स्थायी प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ पर्ल देवदास ने भारतीय साहित्य में प्रेमचंद के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया। हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ रमेश कुमार ने साहित्य के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को उठाने और उनका चित्रण करने की लेखक की विशेषता के बारे में बताया। कार्यक्रम के दौरान सहायक

प्राध्यापक डॉ. एन. लक्ष्मी द्वारा लिखित पुस्तक काव्य भाषा का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम का समन्वय सहायक प्राध्यापक डॉ. दीक्षा गुप्ता ने किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान श्री विजयपुरम और राजकीय पॉलिटेक्निक डिगलीपुर में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए साझा महाविद्यालय प्रवेश पोर्टल कल से 4 सितंबर तक खुला रहेगा। पात्र उम्मीदवारों के लिए परामर्श प्रक्रिया 7 सितंबर को आयोजित की जाएगी। डीब्रेट में परामर्श ग्रीन बिल्डिंग परिसर में और राजकीय पॉलिटेक्निक डिगलीपुर में सीतानगर परिसर में होगा। उम्मीदवारों का पंजीकरण सुबह 9 से 10 बजे तक और परामर्श सुबह 10 बजे से शुरू होगा। उम्मीदवारों को मूल दस्तावेजों के साथ उनकी प्रतिलिपियां लानी होंगी। पहले आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रवेश के लिए केवल साझा महाविद्यालय प्रवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। पर्यावरण एवं वन विभाग में वन रेंजर के पद पर नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन 7 सितंबर को किया जाएगा। संबंधित उम्मीदवारों से कहा गया है कि वे सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक वन सदन स्थित प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय की समिति के समक्ष अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित हों। महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायाबंदर ने इतिहास, कंप्यूटर विज्ञान और खाद्य विज्ञान विषयों में संसाधन व्यक्ति की नियुक्ति के लिए 4 सितंबर को होने वाले साक्षात्कार की तिथि में परिवर्तन किया गया है। अब ये साक्षात्कार 5 सितंबर को सुबह 10 बजे महाविद्यालय के प्राचार्य के कार्यालय में आयोजित किए जाएंगे। संबंधित उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे परिवर्तित तिथि के अनुसार साक्षात्कार में उपस्थित हों। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई करने और दोहरे मापदंड से बचने की अपील की। सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को भारत ने ठुकराया। डॉ. बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में राष्ट्र निर्माण और जिम्मेदार नागरिकता पर जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। और जेएनआरएम में मुंशी प्रेमचंद जयंती पर भारतीय साहित्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:15 हुए हैं। अब सुनिए मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी जानकारी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तट पर वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे होने की संभावना है, जिस कारण समुद्र काफी अशांत रहेगा। अतः मछुआरों को कल तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये था मौसम का हाल। अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाज रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी रानीचंगा मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए कल 2 सितंबर को सुबह 7 बजे श्रीविजयपुरम से चलेगा। जलयान परसों 3 सितंबर को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्रीविजयपुरम पहुंचेगा। लिटिल अंडमान की यात्रा पर एमवी सेंटिनल बृहस्पतिवार 3 तारीख को सुबह 8 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान परसों 3 तारीख को रात 8 बजे लिटिल अंडमान से श्रीविजयपुरम वापस आएगा। लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार की यात्रा पर एमवी कालीघाट परसों 3 तारीख को सुबह 7 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इस जलयान की वापसी यात्रा होगी 4 तारीख को शाम 4 बजे कार निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए। एमवी सेंटिनल लिटिल अंडमान कार निकोबार चौरा तेरेसा कचाल नानकौरी माकचुआ और आफ्रा बे होते हुए कैम्बल बे की यात्रा पर बृहस्पतिवार 10 तारीख को सवेरे 7 बजे श्रीविजयपुरम से रवाना होगा और इस जलयान की वापसी 13 तारीख

को रात 9 बजे कैंबल बे से चलकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्रीविजयपुरम के लिए होगी। नालंदा जलयान नानकौरी होते हुए कैंबल बे की यात्रा पर 8 तारीख को सुबह 9 बजे श्रीविजयपुरम से जाएगा। जलयान 10 तारीख को सुबह 8 बजे कैंबल बे से नानकौरी होते हुए श्रीविजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए कल 2 तारीख को सुबह 6 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्रीविजयपुरम लौटेगा। एमवी कमोटा शहद्वीप की यात्रा पर कल सुबह 6:15 पर श्रीविजयपुरम से जाएगा तथा कल ही सवेरे 8:30 पर शहद्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए रवाना होगा। एमवी रंगत स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सुबह 6:15 पर श्रीविजयपुरम से चलेगा तथा कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराजद्वीप से श्रीविजयपुरम लौटेगा। एमवी जॉली बॉय शहद्वीप स्वराजद्वीप स्ट्रेट आइलैंड कदमताला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सुबह 7 बजे श्रीविजयपुरम से रवाना होगा और इस जलयान की वापसी परसों 3 तारीख को सुबह 7 बजे रंगत से चलकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्रीविजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग कल दिन में 11 बजे श्रीविजयपुरम से शहद्वीप जाएगा। जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहद्वीप से स्वराजद्वीप तथा 2:30 पर स्वराजद्वीप से श्रीविजयपुरम वापस आएगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल दिन में 11:30 पर श्रीविजयपुरम से छूटेगा। जलयान कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराजद्वीप से शहद्वीप तथा 3:30 पर शहद्वीप से श्रीविजयपुरम वापस आएगा। शहद्वीप की यात्रा पर एमवी कमोटा कल दोपहर बाद 2:30 पर श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इस जलयान की वापसी कल ही शाम 4:30 पर शहद्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए होगी। और एमवी रंगत कल शाम 5 बजे श्रीविजयपुरम से स्वराजद्वीप जाएगा। वापसी अगले दिन 3 तारीख को सुबह 5:30 पर स्वराजद्वीप से छूटकर शहद्वीप होते हुए श्रीविजयपुरम के लिए होगी। जलयानों का यात्रा कार्यक्रम समाप्त हुआ।

जन सूचनाएं। गैर कानूनी कृत्यों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर रहता है। ऐसी किसी भी गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग ने आम जनता से सहयोग करने की अपील की है। आम जनता द्वारा असामाजिक तत्व द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी कार्यों की गुप्त सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है 0319223-2100, 0319223-2300-77 और 0319223-2400। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। जन सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम में पहले सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वरों में इक्का राजा रानी फिल्म का गाना, जिसके बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत दिया श्याम सुरेंद्र ने।

और अब अंत में सुनते हैं समीर का लिखा गीत, जिसकी धुन तैयार की है हिमेश रेशमिया ने। गायक कलाकार है अलीशा चिनॉय और के। फिल्म का नाम है आपकी खातिर।

श्रोताओं, अलीशा चिनॉय और के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है युवा दोस्तों को संबोधित हमारा कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर लेकर आता है। जरूरी नहीं कि हर दिन हमारी इच्छाओं के अनुसार हो, लेकिन हर दिन हमें कुछ नया सीखने और स्वयं को बेहतर बनाने का मौका जरूर देता है। कभी सफलता हमें खुशी देती है, तो कभी असफलता हमें अपनी कमियों को समझने का अवसर देती है। इसलिए कठिन परिस्थितियों से घबराने के बजाय उन्हें अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाने का माध्यम समझना चाहिए। दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। याद रखिए, जीवन की असली सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस सफर में मिले अनुभवों, रिश्तों और सीख को सम्मान देने में है। जो व्यक्ति धैर्य बनाए रखता है, अपने प्रयासों पर विश्वास करता है और कठिन समय में भी उम्मीद नहीं छोड़ता, उसके लिए कोई भी रास्ता हमेशा के लिए कठिन नहीं रहता। जी दोस्तों, इसी विचार के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भारत में 1 से 7 सितंबर तक मनाया

जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को संतुलित आहार, स्वस्थ जीवन शैली और उचित पोषण के महत्व के प्रति जागरूक करना है। अच्छा पोषण हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद आवश्यक है। बच्चों, किशोरों और वयस्कों सभी के लिए भोजन में पर्याप्त प्रोटीन, विटामिन, फाइबर और अन्य आवश्यक पोषक तत्व का होना जरूरी है। इस अवसर पर लोगों को पौष्टिक एवं संतुलित भोजन अपनाने, स्वच्छता बनाए रखने और स्वस्थ खान पान की आदतें विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए सही पोषण हमारी पहली आवश्यकता है। दोस्तों, आज मंगलवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम देश की शान।

दोस्तों, दादा भाई नरोजी भारतीय इतिहास के उन महान व्यक्तित्वों में गिने जाते हैं जिन्होंने शिक्षा, समाज सुधार, अर्थशास्त्र और सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें सम्मान पूर्वक भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। उनका जीवन देश और समाज की सेवा, ज्ञान के प्रसार तथा भारतीयों के हितों की आवाज़ उठाने के लिए समर्पित रहा। उनका जन्म 4 सितंबर 1825 को नवसारी, गुजरात में हुआ था और उनका निधन 30 जून 1917 को हुआ। दोस्तों, दादा भाई नरोजी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत प्रतिभाशाली थे। उन्होंने मुंबई में शिक्षा प्राप्त की। आगे चलकर वे गणित और प्राकृतिक दर्शन के अध्यापक बने और भारतीय शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण स्थान बनाया। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में उनका विश्वास था कि ज्ञान और आधुनिक शिक्षा समाज के प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है।

दोस्तों, दादा भाई नरोजी केवल राजनेता ही नहीं बल्कि समाज सुधारक और विद्वान भी थे। उन्होंने शिक्षा के प्रयास और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संस्थाओं और संगठनों से जुड़कर काम किया। उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से भी लोगों तक महत्वपूर्ण विचार पहुंचाए। वे भारतीय समाज में शिक्षा और समान अवसरों के समर्थक थे तथा विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा के महत्व को समझते थे। दोस्तों, सन 1855 में वे व्यापारिक कार्यों के सिलसिले में इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने भारतीय हितों से जुड़े विषयों को सार्वजनिक जीवन में उठाने का कार्य भी किया। उन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जैसे संस्थाओं की स्थापना में योगदान दिया। इन प्रयासों के माध्यम से वे भारत से संबंधित विषयों को ब्रिटेन के सार्वजनिक जीवन तक पहुंचाने में सफल हुए।

प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार बने। उनके विचारों में संवैधानिक और शांतिपूर्वक तरीकों के माध्यम से राजनीतिक सुधार तथा भारतीयों की भागीदारी पर विशेष जोर था। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी की एक ऐतिहासिक उपलब्धि यह थी कि 1892 में वे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय बने। वहां उन्होंने भारतीय लोगों से जुड़े विषयों को उठाने और भारत के हितों की बात रखने का प्रयास किया। उनका यह कार्य उस समय भारतीयों के लिए विशेष प्रेरणादायक

दोस्तों, दादा भाई नरोजी भारतीय आर्थिक चिंतन के महत्वपूर्ण शुरुआती विचारकों में भी शामिल थे। उन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया और अपने प्रसिद्ध ड्रेन ऑफ वेल्थ विचार के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार भारत की संपदा का एक हिस्सा देश से बाहर जा रहा था। उनकी आर्थिक विचारों ने भारत में आर्थिक जागरूकता और राष्ट्रीय चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रमुख विचार उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में संकलित है, जो 1901 में प्रकाशित हुई। दोस्तों, दादा भाई नरोजी का जीवन हमें यह सिखाता है कि शिक्षा, ज्ञान, ईमानदारी और निरंतर प्रयास के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। उन्होंने लंबे सार्वजनिक जीवन में शिक्षा, सामाजिक सुधार, आर्थिक अध्ययन और भारतीय हितों के लिए निरंतर कार्य किया। उनकी वीरता, सादगी और देश सेवा के कारण उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया। भारतीय इतिहास में उनका योगदान हमेशा सम्मान के साथ याद किया जाता रहेगा। उनका जीवन विशेष रूप से युवाओं को यह प्रेरणा देता है कि अपने ज्ञान और प्रतिभा का उपयोग केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि समाज और देश के विकास के लिए भी करना चाहिए।

तो दोस्तों, इसी प्यारे गीत के साथ समाप्त होता है आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, वादा करते हैं जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी इस दोस्त अनुप्रिया को। नमस्कार, शुभ रात्रि।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं लता मंगेशकर के गाए फिल्म सांझ और सवेरा के गीत के साथ। शैलेंद्र के लिखे गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में तैयार आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को स्वर दिया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। फिल्म का नाम है समंदर।

अब प्रस्तुत है मोहम्मद रफी और सुषमा श्रेष्ठा की आवाजों में अंजान का लिखा एवं कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म हम किसी से कम नहीं का ये गीत।

अगले गीत में जगदीश के संगीत को शब्द दिए गीतकार माया गोविंद ने, स्वर दिया आशा भोसले और सुरेश वाडकर ने, और ये गीत है फिल्म सजना साथ निभाना का।

अब आइए सुनते हैं मजरू का लिखा गीत जिसे संगीतबद्ध किया SD बर्मन ने। गायक कलाकार है आशा भोसले और किशोर कुमार तथा फिल्म का नाम है चलती का नाम गाड़ी।

और अब कार्यक्रम के अंत में पवित्र पापी सुनवा रहे हैं इस फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज में। प्रेम धवन के संगीत निर्देशन में तैयार इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब सुनिए रोजगार समाचार। भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर योग्य एवं इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भर्ती के अंतर्गत ग्रुप ए के 2 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनमें सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी और सहायक सलाहकार संचार के एक एक पद रिक्त है। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी तथा सहायक सलाहकार संचार पदों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर 11 के अनुसार होगा। नियुक्ति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली में की जाएगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, रक्षा बल अथवा अन्य सरकारी विभाग में समकक्ष पद पर नियमित रूप से कार्यरत हो अथवा वेतन स्तर 9 में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी अथवा दूरसंचार में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता तथा सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। वही सहायक सलाहकार संचार के पद के लिए उपरोक्त विषयों में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता के साथ रक्षा बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, पुलिस, पुलिस वायरलेस एवं संचार अथवा दूर संचार परियोजनाओं के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव अपेक्षित है। दोनों पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष निर्धारित की गई है। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर उचित माध्यम से ओवर सचिव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण A1 सफरदरजंग एनक्लेव नई दिल्ली 110029 के पते पर भेज सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इसी विज्ञापन के संदर्भ में पूर्व में आवेदन किया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन भेजना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी 1 अगस्त 2026 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देख सकते हैं। रोजगार समाचार समाप्त हुए। लीजिए अब सुनिए संवेद स्वर में गौरवगान।

अभी आप संवेद स्वर में गौरवगान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित एससीओ युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले एससीओ सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और एससीओ युवा लेखक सम्मेलन में भारत

0: की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: सम्मेलन 13 प्रमुख निर्णयों के साथ संपन्न हुआ। ये निर्णय आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और डिजिटल सहयोग से संबंधित हैं। इसके अलावा 4 समझौता ज्ञापनों और 20 से अधिक निर्णयों को भी मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे।
2: Prime Minister further stated that
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा प्रगति और समृद्धि के लिए मजबूत और भरोसेमंद कनेक्टिविटी की पहल महत्वपूर्ण है। भारत ऐसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ें, व्यापार को बढ़ावा दें और विकास के नए अवसर खोलें। हालांकि ऐसी पहलों में देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए।
2: Sovereignty and territorial integrity of nations.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: एवरी ग्रेट जर्नी
1: ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे।
2: Prime Minister further stated that
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा प्रगति और समृद्धि के लिए मजबूत और भरोसेमंद कनेक्टिविटी की पहल महत्वपूर्ण है। भारत ऐसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ें, व्यापार को बढ़ावा दें और विकास के नए अवसर खोलें। हालांकि ऐसी पहलों में देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए।
2: सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। श्री चौहान ने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। एक रिपोर्ट।
5: योजना के 6 लक्ष्यों के आधार पर 100 जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 में 22.54 से बढ़कर जुलाई 2026 में 38.85 हो गया, जो 16.31 अंकों के सुधार को दर्शाता है। यह योजना 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ राज्य की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मिलाकर लागू की जा रही है। वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की निगरानी के लिए 36 योजनाओं में कुल 121 संकेतक निर्धारित किए गए हैं। समीक्षा में निगरानी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। शिवांग मिश्रा के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपूर्ति और बढ़ने से दाम पूरी तरह स्थिर हो जाएंगे और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में

0: पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकी भी रद्द कर दी और राज्य को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
1: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। CJP के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए रहा। इसमें 1,29,000 करोड़ रुपए का योगदान रक्षा उपक्रमों का था। उन्होंने इस उपलब्धि को आत्मनिर्भर रक्षा औद्योगिक आधार के निर्माण की दिशा में देश की महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक बताया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT 6 दशकों से अधिक समय से विशेष रूप से अपनी पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में परिषद के 66वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्कूली शिक्षा में सुधारों के लिए एक ढांचा प्रदान किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को नुकसान और प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट और साझा प्रयासों की जरूरत है। नई दिल्ली में भारत जर्मनी पर्यावरण मंच में उन्होंने कहा कि भारत के विकास के अनुभव ने यह साबित किया है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों एक साथ चल सकते हैं।
2: क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर,
3: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और अपने लिए जलवायु अनुकूल भविष्य बनाने के लिए आपसी सहयोग बेहद जरूरी है। भारत इस दिशा में जर्मनी के साथ अपनी साझेदारी को विशेष महत्व देता है। दोनों देशों के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग कई वर्षों से जारी है और समय के साथ पर्यावरणीय शासन के नए क्षेत्रों तक इसका विस्तार हुआ है।
2: एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल गवर्नेंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में मध्यम जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। वस्तु और सेवा कर के संग्रह पिछले महीने बढ़कर 1,99,853 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये अगस्त 2025 के 1,74,116 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 15% अधिक है। केंद्र सरकार ने ईंधन निर्यात करों की अपनी ताजा पाक्षिक समीक्षा के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार पेट्रोल पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 1.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर बढ़ाकर 25 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क घटाकर 19 रुपए प्रति लीटर किया गया है। अधिसूचित ये संशोधित दरें आज से लागू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के डम्बन्ना में अर्जुन वाहिनी नामक एक विशेष आपदा मोचन दस्ते का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तर्ज पर गठित इस बल का उद्देश्य राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को

और अधिक मजबूत बनाना है। महाराष्ट्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2029 तक राज्य को मादक पदार्थ मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दी है। मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक में मादक पदार्थों के खिलाफ सभी विभागों के समन्वय से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल 30 सितंबर कर दी है। अब संस्थान स्तर पर प्रथम स्तर के

0: Money Talk. This is Akashwani. In the program Money Talk, now we bring you a discussion on India's strong GDP growth amidst global challenges. The participants are Dr. S.P. Sharma, economic analyst, and Rajesh Lake, anchor.
1: Good evening and welcome to Money Talk. Today's topic is extremely timely: India's strong GDP growth amidst global challenges. While major economies grapple with slowing demand, geopolitical tensions, and volatile commodity prices, India continues to stand out as the fastest growing large economy in the world. The Prime Minister said this on India's strong GDP growth amidst global challenges.
2: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई. 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है. लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए. एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है. दुनिया युद्ध में डूबी हुई है. चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है. विश्व संकटों से घिरा हुआ है. सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है. 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है. उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है. दूसरी तरफ भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गुंज चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए हैं. इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है. हमें इस गति को बनाए रखना है.
1: To help us understand what's driving this resilience, we have with us Dr. S.P. Sharma, economic analyst. Dr. Sharma, a warm welcome to Money Talk.
3: Thank you, sir.
1: India's real GDP grew at 7.7% in FY25-26, and recent Q1 FY27 data shows 7.8% growth. So, Dr. Sharma, what are the key drivers behind this outperformance despite global headwinds?
3: I would say the key driver is our resilience, actually, that we have built during the last many years. So, this is not an overnight effect. This is the effect of the efforts of people, trade and industry, the government reforms, hand-holding provided by the government to the various stakeholders in the times of crisis during the COVID period and thereafter, recently the West Asia crisis. So all these developments have built a strong resilience of the Indian economy that is now very much visible at the

0: Manhattan. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए सेमिकॉन 2.0 से भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र को मिली नई गति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आईटी विशेषज्ञ जितेन कुमार जैन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
1: आज दुनिया की अर्थव्यवस्था और आधुनिक तकनीक तेजी से सेमीकंडक्टर और चिप्स पर निर्भर होती जा रही है। मोबाइल फोन और कारों से लेकर रक्षा, अंतरिक्ष, दूरसंचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक लगभग हर आधुनिक तकनीक में सेमीकंडक्टर जरूर मौजूद है। और इसी दिशा में भारत सरकार ने देश में ही चिप निर्माण और पूरे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए सेमिकॉन 2.0 योजना को अधिसूचित किया है, जिसके लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक का बड़ा बजटीय प्रावधान किया गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग के बाजार में करीब 10% की हिस्सेदारी हासिल कर सकता है और वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में कहीं बड़ी भूमिका निभा सकता है। सरकार का लक्ष्य दरअसल केवल भारत में चिप फैक्ट्रियां स्थापित करना ही नहीं, बल्कि डिजाइन से लेकर वेफर निर्माण, चिप उत्पादन, पैकेजिंग, अनुसंधान और प्रतिभा विकास तक एक संपूर्ण सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करना है। और इसी महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं जितेन कुमार जैन साहब, जो आईटी एक्सपर्ट हैं। जितेन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आकाशवाणी में।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
1: सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे आम श्रोताओं के लिए कि कैसे हम इसे समझें कि सेमीकंडक्टर या चिप दरअसल होता क्या है और आज इसका महत्व इतना क्यों बढ़ गया है।
2: देखिए, वैसे तो सेमीकंडक्टर मशीनों के अंदर बिजली के बहाव को कंट्रोल करती है लॉजिकल प्रोसेसिंग वगैरह के लिए, पर अगर एक आम आदमी को बहुत सरल भाषा में समझाना हो तो सेमीकंडक्टर एक वो छोटी सी चिप है, वो किसी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट में, चाहे आपकी वॉशिंग मशीन हो, टीवी हो या कार हो या फोन हो, जो उस पूरे उपकरण का पूरे दिमाग की तरह काम करती है। वहीं से उसमें डेटा प्रोसेसिंग होती है, कैलकुलेशंस होती हैं, जो भी किसी तरह का फंक्शंस है, लॉजिक्स है, सर्किट है, सब उसके अंदर वो चलते हैं। तो सेमीकंडक्टर को आप एक छोटी सी चिप समझ लीजिए, जो किसी भी एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का एक तरह से अंदर का दिमाग और दिल है।
1: जी बिल्कुल, बहुत सरल भाषा में आपने समझाया, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से अगर हम सेमीकंडक्टर निकाल दें तो

0: शायद काम ना करें, क्योंकि अब चीजें मैनुअल बहुत कम बच गई हैं।
1: हाँ, अब साधारण भाषा के लिए जैसे आप कहें तो जो नई गाड़ियां आ रही हैं, ऑटोनोमस व्हीकल हैं, वो अपने आप रेडार के थ्रू सड़क पे देखते हैं, गाड़ी को डिटेक्ट करते हैं, कहाँ जाना है, कब टर्न लेना है, कब ब्रेक लगाना है। वो जो सारी लॉजिकल प्रोसेसिंग जो हो रही है, जो डिसीजन मेकिंग हो रही है, जो थिंकिंग हो रही है, जो कैलकुलेशंस चल रही हैं, उसके पीछे जो लॉजिक है, वो पूरा का पूरा एक सेमीकंडक्टर के अंदर होता है, या मल्टीपल सेमीकंडक्टर्स के अंदर होता है। ये छोटे से इलेक्ट्रिकल चिप्स हैं, और जिसको भारत के अंदर भी अब इसका उत्पादन हो, इसके ऊपर हमारे विकास की क्षमता हो, उसको लेकर भारत सरकार नई नीतियां बना रही है।
0: जी, एक पूरा इकोसिस्टम दरअसल भारत सरकार विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है, और सरकार ने सेमिकॉन 2.0 के लिए लगभग 1,27,000 करोड़ रुपए का बड़ा प्रावधान किया है। कितना बड़ा फैसला है ये और कितना महत्वपूर्ण है।
1: खाली इसको हमें अर्थव्यवस्था या मतलब जो सेल्फ रिलायंस है या आत्मनिर्भरता के एंगल से नहीं देखना चाहिए, एक राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जड़ा बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि है आज के जमाने में सेमीकंडक्टर इतना महत्वपूर्ण हो गया। अगर आप देखें तो शायद आज दुनिया में तेल इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं जितना सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है, क्योंकि आपके मोबाइल फोन से लेकर आपका कार, आपके सारे बैंकिंग इकोसिस्टम, आपके यूपीआई, आपके सैटेलाइट्स, आपके डिफेंस सिस्टम्स, आपके डेटा सेंटर, आपके अपने घर के लैपटॉप, कंप्यूटर, कार, टीवी, फ्रिज, सबके पीछे कोई ना कोई सेमीकंडक्टर है। और अभी पहले कुछ सालों तक पहले ही हम 90% चीजें सारी बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, और यहाँ पे सेमिकॉन 2.0 में, जैसे 1 के अंदर तो हम यहाँ पे खाली असेंबलिंग या मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे थे, सरकार अभी चाह रही है कि हमें पूरी की पूरी इस सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन को भारत के अंदर निर्मित करना है, सेल्फ रिलायंट बनाना है, ताकि हम यहाँ खाली असेंबलिंग नहीं करें, हम यहाँ पे डिजाइनिंग भी करें, फैब भी करें, मैन्युफैक्चरिंग भी करें, और पूरे विश्व में भी आगे कई देशों के अंदर एक विश्वस्त सप्लायर के तौर पर अपने आप को स्थापित करें।
0: बिल्कुल, और आपने सही कहा कि सेमिकॉन 1.0 के बाद इसीलिए सेमिकॉन 2.0 की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि ये केवल पिछली योजना का विस्तार ही नहीं बल्कि इसमें भारत की रणनीति का नया और व्यापक दृष्टिकोण भी शामिल है, और हम पूरी तरीके से इस पे आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। मंत्री जी, अश्विनी वैष्णव ने ये भी कहा है कि आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में लगभग 10% की हिस्सेदारी हासिल कर सकता है। ये लक्ष्य कितना महत्वाकांक्षी है और इसे हासिल करने के लिए किन किन प्रमुख चुनौतियों को पार करना होगा?
1: महत्वाकांक्षी तो है, और पर जरूरी भी है। जरूरी इसलिए कि जो आपका पिछला भी सवाल था कि इसमें मात्र सप्लाई चेन से बड़े मुद्दे नहीं, हमारी राष्ट्र की सुरक्षा भी जुड़ी है, क्योंकि ज्यादातर डिफेंस इकोसिस्टम के अंदर, सिस्टम्स के अंदर जो नए एआई चिप्स हैं, डेटा सेंटर्स हैं, आप सैटेलाइट्स ले लीजिए, छोटे छोटे रडार, सब जगह जो सेमीकंडक्टर हैं बाहर से लेकर आ रहे थे ज्यादातर। तो कभी युद्ध की स्थिति में या किसी देशों से संबंध खराब होने की स्थिति में हमारे यहाँ ऐसी मतलब समस्या ना उत्पन्न हो जाए कि हमारे पास सेमीकंडक्टर की सप्लाई नहीं है, उसके कारण इस सेक्टर प्रभावित ना हो, इसलिए हम उस राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती को भारत के अंदर ही हम अभी चाह रहे हैं कि यहीं पर निर्माण हो, ताकि हमें कभी इस तरह की चुनौती का सामना ना करना पड़े। और चूंकि अब हम निर्माण करना ही चाह रहे हैं, यहाँ पे हमारा सेमीकंडक्टर 1.0 पहले भी एक बिजनेस के एंगल से अच्छा मिशन था, स्किल्ड मैन पावर हमारे पास है, पॉलिसीज हमारी अच्छी हैं, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, हम ये चाह रहे हैं कि सेल्फ रिलायंट होने के अलावा हम एक तरह से एक एक्सपोर्टिंग सेमीकंडक्टर एक्सपोर्टिंग नेशन भी बने, तो ये एक तरह से पूरा का पूरा ध्याय है।
0: बिल्कुल, आपने कहा जितेंद्र जी कि सेमिकॉन 2.0 की सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह केवल चिप फैक्ट्री लगाने तक और असेंबल करने तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी वैल्यू चेन विकसित करने की बात इसमें कही गई है। एक बार ये जो कंप्लीट इकोसिस्टम है, कंप्लीट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है, इसको जरा एक बार और समझाएं आम लोगों की समझ के लिए।
1: देखिए, इसमें आपको खाली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए खाली फैब की बात नहीं है, आपको जो उसके लिए जो मशीनरी है, जो इक्विपमेंट है, वो भी हम भारत के अंदर बनाना चाह रहे हैं, जो स्किल्ड मैन पावर चाहिए उसका निर्माण भी हम भारत में करना चाह रहे हैं, इससे नौकरियां भी बढ़ेंगी और ऑब्वियसली हमारे इनहाउस टैलेंट भी होगा। आपको चिप डिजाइनर भी चाहिए, है ना, उसके बाद आपको डिमांड भी चाहिए, पहले तो इंटरनल डिमांड आपके यहाँ क्रिएट हो कि आप इंपोर्ट ना करके यहीं से लें। तो इसमें अगर आप देखेंगे, पूरी की पूरी एक तरह से हम इंपोर्ट डिपेंडेंसी खत्म करके डिफेंस और टेलीकॉम सेक्टर में अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाना चाह रहे हैं। अब इसमें आपको देखिए, लैंड एक्विजिशन चाहिए, पानी चाहिए, डेटा सेंटर मतलब अल्ट्रा क्लीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज चाहिए, और स्किल मैन पावर के अलावा फिर सबसे बड़ी बात है, सब हो भी जाए तो इतना बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कौन करेगा। उसके लिए फिर जो स्पेशलाइज इक्विपमेंट चाहिए, या तो वो आप यहाँ बनाए या फिर कोई दूसरा देश आपको देने को तैयार हो, और फिर बहुत ही एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड सप्लाई चेन्स भी चाहिए। तो इसके लिए ये जो पूरा इकोसिस्टम है, ये मेरे ख्याल से अगले 10 साल

0: का विजन है और इसमें कुछ चीजों का निर्माण यहाँ पे ऑलरेडी हो रहा है। देखिए हम असेंबलिंग आज ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बनाऊँ, आज हिंदुस्तान में आईफोन बनता है, उसका मतलब ये नहीं कि आईफोन हमारे यहाँ डिजाइन हुआ या हमने उसका वो चिप बनाई या हमने उसका किया, हम लाते हैं यहाँ पे उसको, हमारे पास हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग फैसिलिटीज हम लोग कर रहे हैं। अब हम ये चाह रहे हैं उसका जो चिप का डिजाइन है, जो उसका पेटेंट है आईपी, वो भी भारत के अंदर ही उसी का निर्माण, उसके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग में मशीनें जो लाई गई है स्पेशलाइज जो प्लांट में लगी है, उनका निर्माण भी भारत के अंदर हो, तो पूरा का पूरा एंड टू एंड इको सिस्टम जिसमें जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो उसका राइट है, वो पूरा का पूरा भारत के अंदर उसका निर्माण हो, यहीं पर हम इसको पूरा का पूरा बनाए। इसलिए जब आप ये बात कर रहे हैं जो सेमीकंडक्टर 1.0 में मात्र आप एक इकोसिस्टम बनाना चाह रहे थे असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग का, 2.0 के अंदर आप चिप डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, उसकी पैकेजिंग, उसका सारा इक्विपमेंट, इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग, टैलेंट, टैलेंट की स्किलिंग, डिजाइनिंग, सब आप भारत के अंदर करना चाह रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, सरकार ने सिलिकॉन फैब के अलावा सिलिकॉन कार्बाइड, गैलियम नाइट्राइड और डिस्प्ले फैब जैसे क्षेत्रों पर भी जोर दिया है। इसे जरा सरल भाषा में बताएं आप कि अलग अलग प्रकार के ये सेमीकंडक्टर क्या हैं और किन क्षेत्रों में ज्यादा उपयोगी होंगे।
0: डिस्प्ले फैब का जैसे आपने उदाहरण दिया, अब आज जितने डिस्प्ले हैं टीवी के अंदर, मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, आपकी कार की स्क्रीन के अंदर, ये सारा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का हिस्सा है। और अभी ये पैनल क्या है कि ज्यादातर बाहर से आ रहे थे, कुछ एक पैनल है जो वो बाहर की कंपनियां इंडिया में अपने उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग करवा रही हैं, और उसमें फिर एक और आपको जानकर आश्चर्य होगा, बड़ी टीवी कंपनियों के जो ओरिजिनल डिस्प्ले बोर्ड से पैनल है पीछे जो फैब है, वो हम ही नोएडा में बनाकर, बैंगलोर में बनाकर हम बाहर उसको एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वहां उनकी असेंबलिंग होती है, लेबलिंग होती है, फिर वो रीराउट होकर पूरा का पूरा एक फिनिश टीवी इंडिया में आता है। तो अब ये हम ये चाह रहे हैं कि इसके अंदर ये जो सेक्टर है, इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर है, उसके अंदर एक बेहतरीन निवेश हो, ताकि जो डिस्प्ले फैब के अंदर जो एक भारत एक तरह से मतलब विश्व के पहले या दूसरे स्थान के अंदर आ जाए। बिकॉज ये कैसा है कि हम ऑलरेडी सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, कई कंपनियां हमारी काम कर रही हैं, और ये कंपनियां बड़े जो ब्रांडेड ब्रांड्स हैं, जो वेल नोन रिस्पेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांड है, स्पेशली कोरियन और जापानीज ब्रांड्स, उनके लिए ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो वो मुझे लगता है कि जैसे जैसे यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग होगी अपने ब्रांड के हिसाब से, तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी कम होगी, और हमारे यहाँ का भी पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का और स्किल जॉब्स का, वो यहीं पे डेवलप हो जाएगा। और यही चीजें फिर आपको देखिए डिफेंस और ऑटोमोटिव एयरोस्पेस में भी काम आने वाली है, जो आपके फिफ्थ जनरेशन एमका वगैरह के डिस्प्ले हैं, जो दूसरे डिस्प्ले हैं, वो सब यहीं पे पूरे के पूरे बन जाएंगे।
1: जी, कब तक उम्मीद है कि भारत में जो पहली फैब होगी वो शुरू हो सकती है?
0: नहीं, फैब तो ऑलरेडी कहीं लगी हुई है, ऐसा नहीं है, पर वो छोटे छोटे चीजें बना रहे हैं। अभी जो बड़ी डिस्प्ले फैब है
1: जी,
0: जिसके ऊपर अब देखिए आपको ना उसमें आपको एक फैब डिस्प्ले के ऊपर मिलियंस ऑफ पिक्सल्स होते हैं, उसके ऊपर आपको एसोसिएटेड सर्किटरी यहाँ पर बनानी है, तब जाके वो पूरा का पूरा एक इनहाउस डिस्प्ले पैनल बनेगा, उस पर इंटीग्रेटेड सेंसर भी आपको यहीं पे बनाने हैं, तो उसका काफी कुछ सामान ऑलरेडी यहाँ पे बन रहा है, ऐसा नहीं बन रहा, पर उसको एक कंप्लीट पैकेज, एक फर्निश फैब जो लगाने की, जो एक बड़े लेवल की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात है, चैलेंज उसका है। तो मुझे लगता है मे बी अगले 4-5 साल में ऐसी बड़ी फैक्ट्री यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएंगी।
1: जी बिल्कुल, अभी हम विकसित भारत 2047 की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। 2047 यानी वो साल जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मना रहा होगा, और उस वक्त हम पूरी तरीके से विकसित राष्ट्र होंगे। सरकार ने योजना बनाई है ऐसी, और हम सब उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये है जितेंद्र जी, कि ये 2.0 जो है सेमीकॉन, इससे रोजगार के क्षेत्र में कितनी वृद्धि आप देख रहे हैं, और ये अगर कहें कि जीडीपी में भी भारत के कितना ज्यादा सहयोग करने जा रही है, जिससे कि बहुत उम्मीदें हैं, आपका क्या आकलन है?
0: वो तो आपका इंपोर्ट बिल कम होगा, तो ऑब्वियसली आपको फॉरेक्स का फायदा यहाँ पर होने वाला है। आज 1,27,000 करोड़ का आउटले की आप बात कर रहे हैं, जो सारी हाईली स्किल्ड जॉब्स होंगी तो जनरेट होंगी, वो भी भारतीय नागरिकों को मिलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का पूरा सेक्टर बढ़ेगा, और फिर वो खाली बड़ी फैब और इंडस्ट्रीज की बात नहीं है, जो उसके अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिकल कॉम्पोनेंट लगने हैं, उसके लिए जो लोकल सप्लाई चेन चाहिए वो भी हिंदुस्तान में, उनको भी पूरा का पूरा मौका बढ़ावा मिलेगा, जो इनडायरेक्टली आपके एंसिलरी जॉब्स हैं वो पूरे के पूरे बढ़ेंगे। फिर आप जब ये डिफेंस एंड टेलीकॉम में स्ट्रेटेजिक रेसिलियंस आपकी बढ़ेगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, तो वो जो सेक्टर यहाँ पर चीजें बनेंगी उसमें भी आपको जॉब्स आनी है। फिर सेमीकंडक्टर रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं, जिसमें डिजाइन से लेके पूरा उनकी मैन्युफैक्चरिंग, या मतलब एक खाली चिप डिजाइन की ही बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए 100-150 स्टार्टअप हो, तो उनके अंदर जो नौकरियां हैं वो साधारण नौकरियां नहीं है, वो हाईली स्किल्ड नौकरियां होंगी। तो आप भारत को आने वाले समय के अंदर, मैं ये मान के चल रहा हूँ, जो चैलेंज आपको लग रहा है कि जो AI से आप जॉब लॉस वगैरह की बातें कर रहे हैं, वो हाईली स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उन जॉब्स का नया रिप्लेसमेंट वगैरह आएगा। और मैं ये मान के चलता हूँ कि कम से कम अगले

0: 5-6 साल के अंदर करीबन 81,000 रुपए की नौकरियां खाली सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के अंदर, 81,000 नौकरियां यहाँ पर जो नई नौकरियां हैं वो आएंगी।
1: बिल्कुल
0: हो सकता है थोड़ी सी कम ज्यादा हो जाए, मगर अगर आप पूरे दशक के अंदर एंड में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा सेक्टर लाखों जॉब्स करेगा। इसमें खाली हाईली स्किल्ड जॉब्स नहीं है, फिर वो जो इंडस्ट्री के अंदर नॉर्मल जॉब्स भी आती हैं, लो स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, मिड स्किल्ड, वो सब मतलब जो है पूरी की पूरी नई इंडस्ट्री यहाँ पर खड़ी है।
1: सेमीकंडक्टर का जो क्षेत्र है बहुत बड़े पैमाने पर, इसका मतलब है कि भारत में रोजगार के अवसर बढ़ाने जा रहा है। दरअसल भारत अब केवल दुनिया के लिए बाजार या तकनीकी प्रतिभा उपलब्ध कराने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि भविष्य की डिजिटल दुनिया को चलाने वाली चिप्स की वैश्विक वैल्यू चेन का एक महत्वपूर्ण और अपरिहार्य हिस्सा बनने की दिशा में भी आगे बढ़ चुका है, और सेमिकॉन 2.0 इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए जितेंद्र कुमार जैन जी, आईटी विशेषज्ञ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे सेमिकॉन 2.0 से भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र को मिली नई गति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आईटी विशेषज्ञ जितेंद्र कुमार जैन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: मंथन।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। अब सुनिए व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संदेशे आते हैं।

दिल से निकली फरमाइश जब सुरों से मिलती है, तब बनता है आपका अपना संगीत भरा सफ़र। तो चलिए निकल पड़ते हैं ऐसे ही सफ़र पर कार्यक्रम संदेशे आते हैं के साथ। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको बता दें, अपना पसंदीदा गीत को सुनने के लिए हमें भेजिए अपना नाम, पता, फिल्म का नाम और गीत के बोल हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर है 9474234000। तो श्रोताओं, पढ़ते हैं आज का पहला व्हाट्सएप मैसेज, जिसे भेजा है राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना गुंडाने, प्रणय प्रसिद्धि और हीरामन शिंदे। हमारे इन दोस्तों ने पसंद किया है फिल्म दिलवाले का ये बेहद ही खूबसूरत गीत।

अगला फरमाइशी गीत हमने लिया है होप टॉन बम्बू फ्लैट से एस साई शंकर, एस भवानी शंकर, मोहम्मद आदिल और एस संतोष कुमार। हमारे ये श्रोतागण सुनना चाहते हैं फिल्म सौतन का ये खूबसूरत सा गीत।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में अब पेश है फिल्म तेरे नाम का एक गाना। इस गीत को पसंद किया है डेरी फ्रॉम श्री विजयपुरम से चंदना ने।

डॉलीगंज श्री विजयपुरम से जुड़े हैं हमारे श्रोतागण मंदिरानाथ, ओजसनाथ और शिवमनाथ, जिनकी पसंद है फिल्म मेरे यार की शादी है का ये गीत। आइए सुनते हैं इनके पसंद का ये गाना।

कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है, चुरा लिया है तुमने फिल्म से। इस गीत को सुनने के इच्छुक श्रोतागण है नया गांव श्री विजयपुरम से, सीमा, आरती, प्रियंका और अदिति। तो चलिए सुनवाते हैं हमारे ये लिसनर्स के पसंद का ये गीत।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी जानकारी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तट पर वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है, जिस कारण समुद्र काफी अशांत रहेगा। अतः मछुआरों को कल तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये था मौसम का हाल। इस समय रात्रि के 10:30 और 50 सेकेंड हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यही समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 सितंबर सन 2026। इस समय सवेरे के

5:28 और 35 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 5:30 हुए हैं। शुभारंभ।

0: अब सुनिए आज का अनमोल विचार।
1: विनम्रता ही सबसे बड़ा साहस है। डर से हार मान लेना ही सबसे बड़ी असफलता है, जबकि एक और बार कोशिश करना ही सफलता का सबसे निश्चित तरीका है। आपका हर छोटा कदम, आपका हर नया प्रयास, अज्ञात को स्वीकार करने की आपकी हर इच्छा, यही आपका असली साहस है। तो उठिए, अपने अंदर के साहस को जगाइए और आज अपने डर को हराकर एक नया कदम उठाइए, क्योंकि संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी।

ये था आज का अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं इस मातृ वंदना से।